FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तद अनुसार 12 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन

0: रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हरण हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही आनंद से भरी होगी। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में आइए सुनते हैं

ये है विविध भारती। झरोखा में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद सुनिएगा श्री रामचरितमानस का भाग 278 6:35 से 6:45 से सुबह व शाम, संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। इस कार्यक्रम का 12वां भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के।

8:15 से त्रिवेणी, माफ कीजिएगा 8:15 से सुनिएगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक लेकर आएंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेत्री श्रीदेवी पर। समय सुबह व रात्रि 9:30 से। दस बजे से पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेत्री और निर्देशक कनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से पियानो वादक, संगीतकार, गायक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। बारह बजकर 5 मिनट से लेकर आएंगे यादों की महफिल। 1 बजे से सुनिएगा सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार।

अनुवादक, संगीतकार, गायक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। बारह बजकर पांच मिनट से लेकर आएंगे यादों की महफिल, एक बजे से सुनिएगा सुरीला सफर। दो बजकर तीस मिनट से सदाबहार नगमे का वक्त होगा। दिन में तीन बजे से सखी सहेली, विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, साड़ियों का संसार, खंडुआ साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके में मेहनत, व्यंजन में ओट्स के व्यंजन, दिनचर्या में अखबार पढ़ने की आदत, ये होंगे आज के विषय। चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान में लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। पांच बजे से छायागीत, पांच बजकर तीस मिनट से तराने नए पुराने, छह बजकर पैंतीस मिनट से संध्या रंजन। शाम सात बजे से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर आएंगे।

7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 बजे सुनिएगा हवा महल में प्रहसन आंधी। लेखक निर्देशक भृंग तुपकरी। नौ बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। दस बजे का वक्त होगा छाया गीत का। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम का विवरण।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुलमणि शांत चित्त शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीछराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, और कल की कड़ी में हमने शुभाजीत से सुनी थी कजरी। और जैसा मैंने कहा था कि एक और कजरी सुनने का मन है तो शुभाजी आज फिर से कजरी हो जाए।
1: जी जरूर, और कुछ ऐसी कजरी सुनाना चाहूंगी आपको और उनके बारे में बात भी करना चाहूंगी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत

0: बड़े कवि से जुड़ी हुई बातें हैं। काशी के एक विख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
1: इनको और इनके नाम को कौन नहीं जानता।
0: तो उनकी बहुत सारी कजरी जो है वो उन्होंने प्रकाशित भी की और हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है। जैसे एक बहुत उनकी जानी मानी कजरी, उनकी लिखी हुई, कहनवा मानो हो दिल जानी, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। और विख्यात गायिका से श्रीमती गिरजा देवी जी, उनसे भी हमें सुनने को मिलती हैं ये चीजें। तो भारतेंदु जी ने तो बहुत कुछ लिखा और हर ऋतु के लिए लिखा, हर उत्सव के लिए लिखा, दीपावली के लिए भी लिखा सब। लेकिन जो कजरी का उनका संग्रह है वो कुछ विशेष है। और वो उनके मित्र और अन्य जो साहित्यकार थे उनके साथ वो एक मैगजीन भी निकालते थे जिसमें कि प्रेम घन इत्यादि जो लोग थे उनकी भी कजरियां प्रकाशित होती थी और उनकी भारतेंदु जी, भारतेंदु बाबू की स्वयं जो कजरियां थी वो भी प्रकाशित होती हैं।
1: शुभा जी, जैसा आपने कल बताया कि कजरी के दंगल होते थे
0: जी,
1: तो उसके लिए भी तो ये चीज चाहिए किसे गाया जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: तो तब ये जो प्रचलन था
0: जी
1: कि कजरी के अखाड़े, कजरी का दंगल, एक दल सुनाएगा फिर दूसरा दल सुनाएगा, तो इसमें कुछ और शब्दगत खासियत भी होगी, विशेषता होगी जो आप आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कजरी सुनाने जा रही हैं।
0: जी, आज उन्हीं की कजरी सुनाऊंगी
1: तो।
0: और वैसे तो उनकी एक बहुत ही मतलब प्रख्यात कजरी है जो कि झूले के बारे में है कि राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा, वो बहुत प्रचलित है। लेकिन मुझे लगा कि एक कुछ दूसरी कजरी सुनाई जाए आपको भारतेंदु बाबू की, तो बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए। वैसे तो भारतेंदु बाबू की जो ये पंक्तियां मिलती हैं वो केवल चार पंक्तियां हैं उनकी इस कजरी में, प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा।
1: वो कैसे हैं?
0: एक सेकंड आपको पूरी रचना सुनाती हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ है वो भी देखते हैं। तो ओढ़ो सुरख चुनरी तापे श्याम चदरा, ये लिखते हैं वो, देखो बिजुरी चमके बरसे अदरा, हरिचंद तुम बिन पिय अति कदरा। ये जो चार पंक्तियां हैं ये उनकी उनके संग्रह में मिलती हैं। लेकिन अब जैसे वृंदावन यदि आप जाएं या ब्रज का जो ब्रज में अगर आप जाएं तो ब्रज भाषा की में भी ये बहुत प्रचलित है, उस एरिया में भी बहुत प्रचलित है ये, और वहाँ पाठ भेद और पाठांतर काफी मिलता है। तो मंदिरों में जो कजरी गाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की है जिसमें कि पहली जो पंक्ति है वो तो भारतेंदु बाबू वाली ही है, लेकिन उसके बाद काफी कुछ अलग हो गया है वो इस प्रकार।

0: ऐसे करके और भी अंतरे जोड़ दिए गए हैं
1: जी,
0: तो ये पाठ भेद आ गया है
1: जी। लेकिन आज जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कजरी आप सुना रही हैं वो ये नहीं है कुछ?
0: नहीं, ये तो बहुत सुनने में आती है, मुझे लगा कि एक दूसरी कजरी आपको सुनाऊं। बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए, जी नहीं बहलत प्राण पिया बिन कीने लाख उपाय, बिन सांवरे पियरवा जी की जरन न जाए।

0: ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। हमने शुभा जी से कजरी सुनी। शुभा जी, कजरी को लेके मेरे मन में कुछ एक सवाल हैं
1: जी।
0: लेकिन आज हम यहीं रुकते हैं। श्रोता मित्रों से आज्ञा चाहते हैं और आपसे भी मैं आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर। नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसी भी देश के युवा को उनकी जो बुरी प्रवृत्ति हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं, उनसे बचाने के लिए और उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए इसके लिए उनको आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। किसी भी देश का युवा उस देश का सशक्त आधार होता है, लेकिन जब भी युवा अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूलकर विलासिता के कार्यों में अपना समय नष्ट करता है तो देश बर्बादी की ओर अग्रसर होने लगता है। पहली बार सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब है सरकार युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे।

श्रोताओं, पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यानी हमारे देश में अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध है। आवश्यकता है आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदार बनाने की, उन्हें बुरी आदतों जैसे नशा, जुआ, हिंसा आदि से बचाने की।

श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश के कर्णधारों को युवाओं के उचित विकास एवं दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। जब देश के युवाओं का भविष्य संवरेगा तो समाज का, देश का और नेताओं का भविष्य भी उज्जवल बनेगा।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है

श्रोताओ, आज 12 अगस्त को है विश्व हाथी दिवस। प्रतिवर्ष ये दिन हाथियों के लिए मनाया जाता है, जो कि विश्व के हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित है। इसकी कल्पना 2011 में कैनेडियन फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और कैनजवेस्ट पिक्चर्स के माइकल क्लार्क और एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के महासचिव सेवापूर्ण ददरानंदा ने थाईलैंड में की थी।

श्रोताओ, विश्व हाथी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है हाथियों के अवैध शिकार, पालतू हाथियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनकी प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान देना।

अभी आप नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और आइए सुनवाते हैं आपको महबूबा फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है RD बर्मन का।

0: अखियों के झरोखों से। ये था फिल्म का नाम, हेमलता की आवाज़ थी, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में।

इंदिवर का लिखा यह गीत था कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, आवाज़ें थी मुकेश और कंचन की, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। और आइए सुनवाते हैं आपको जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ें, फिल्म का नाम नदिया के पार।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्य

0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक

0: राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस

0: में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं हरिहरन की गाई हुई कुछ गजलें।

सुगम संगीत में आप हरिहरन की गाई हुई गजलें सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सर इसका चैनल है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझा कर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू।

0: प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
0: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
0: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषाविद,

0: और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
0: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त

0: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
1: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
0: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
1: तो फिर?
0: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
1: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
0: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
1: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
2: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
0: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
2: Is that right? You black monkey?
1: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
2: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
0: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
2: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
0: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
2: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
0: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
2: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है, इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
1: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
4: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
1: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
4: और अपने सुभाष बाबू?
1: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
5: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
4: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
3: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए।

0: जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
1: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
1: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
3: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज साहब।
4: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
1: ये अखबार कहां गया?
4: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की।

0: जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया,
1: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
4: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानो उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे

0: अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सरिस्का चैनल है।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा और पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज, आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी। बैठक में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वे वंदे भारत ट्रेन से कल नई दिल्ली से जयपुर पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने सहयात्रियों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने युवाओं से वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और युवा वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सामाजिक न्याय राज्य सरकार की नीतियों की आत्मा है और वर्चित वर्गों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ये बात जयपुर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान कही। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों से उनके प्रशासनिक अनुभव का उपयोग युवाओं के मार्गदर्शन के लिए करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से करीब 4.25 लाख और अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से 4,30,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कल ही जयपुर को पीएम ई बस सेवा के तहत 16 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। उन्होंने शासन सचिवालय में बसों को हरी

0: झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन के लिए बस स्टैंड, चार्जिंग पॉइंट सहित जरूरी ढांचा विकसित किया जा रहा है।
1: हमारी बसें लगातार आ रही हैं और लगभग इनकी संख्या 1000 से ऊपर हो। जयपुर और भीलवाड़ा को 16 पीएम ई बसें समर्पित की गई हैं और उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, वहां भी हमारी ये बसें जा रही हैं। हम चाहते हैं कि इन बसों के माध्यम से जो एक यातायात का जिस तरह से व्यक्तिगत वाहनों पर एक लोड है, समय के हिसाब से इन बसों का संचालन होगा तो आरामदायक सुविधा भी मिलेगी, वो वहां पहुंचेंगे और एक पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरी होगी।
0: प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर क्षेत्रीय शाखा ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में सुभाष चंद्र बिजनौरिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के कल जारी किए गए बयान के अनुसार इस मामले में सुभाष चंद्र बिजनौरिया, रणवीर बिजारनिया और उनके सहयोगियों पर रियल एस्टेट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इन लोगों ने निवेशकों से 2676 करोड़ रुपए जुटाए थे। आरोपी सुभाष चंद्र को जयपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें कल तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरलम नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी आज विचार और पारित होने की संभावना है। लोकसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा। इस ऐप के जरिए मरीज की जरूरी जानकारी उसके पहुंचने से पहले ही संबंधित अस्पताल तक पहुंच जाएगी, जिससे उसके इलाज की तैयारी पहले से की जा सकेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में उन्होंने मातृ मृत्यु के मामलों की समीक्षा करते हुए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की जांच और जरूरत पड़ने पर उनके निशुल्क उपचार में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में लंबित पदस्थापन अब राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और आवश्यकता आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नव चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदस्थापन भी इसी पोर्टल से कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज हेल्थ पोर्टल से पदस्थापन होने पर उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा और अधिक मरीज भार वाले संस्थानों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी। उन्होंने अधिकारियों को नई भर्ती से चयनित और पदोन्नत कार्मिकों के लंबित पदस्थापन जल्द पूरा करने को कहा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र सरकार से स्वीकृत एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि स्वीकृतियों के अभाव में लंबित परियोजनाओं के लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी और उन पर काम किया जाएगा।
2: अभी सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है और जो अगर कोई कम्प्लाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कमी है, कहीं कुछ है, तो उन पे एक्शन भी लेना है। 9 एक्सप्रेसवेज है, उन पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ कि NHAI ने जो ले रखा है उन पे भी अभी तक क्या हुआ, कहाँ पर रुकावट है, फॉरेस्ट में है या और कहीं है, उन पे भी अब हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जो स्टेट PWD कर रहा है उस पे भी हम लोग जल्द से जल्द अब इन पे जहाँ जहाँ पर कहीं भी कहीं रुकावट है उस रुकावट को दूर किया जाए और जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई की जाए।
0: उधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य में ऊर्जा

0: उत्पादन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी है। सवाई माधोपुर में सुबह से ही हल्की से मध्यम बरसात हो रही है। बारिश से जहां एक ओर जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है, वहीं निचले इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ोती और चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3 प्रमुख बांधों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के बाद घग्गर नदी के नाली बेड में पानी की आवक शुरू हो गई है। विभाग ने आज भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। वहीं शेष जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। यहां हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज, आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का यह सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत दिल चाहता है फिल्म से हमने आपको सुनवाया। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का,

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पी के फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा हवाई, अभी भी, लक चिक्की चुंटर, लप

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

0: इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।
1: नहीं, नहीं।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

0: रुक जाए दोनों आंखें, मारो तो छुरपट जाए छुरपट जाए, दोनों आंखें मारो तो छुरपट जाए छुरपट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
1: माना माना मैं।

0: फिल्म जस्टिस चौधरी। पाम पाम।
1: पाम पाम। ए मम मिया प्यार की गाड़ी दे चलाओ, एक्सीलेटर और दबाओ।
2: तीन गली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, रास्ता मुड़ जाने वाला है, मेन रोड आने वाला है। स्टॉप
1: लव
2: मम मिया
1: पाम पाम।
0: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

0: मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।
1: समझे

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।
2: मिले

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थीं।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

0: जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।
1: कहती है मुझे तो हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई,
2: हवा हवाई,
0: था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
3: आज के फनकार।

0: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये संदेश का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
2: कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
3: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
2: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर
3: जी है। जी जी, और उन्होंने NSG में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे NSD के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
2: ओके।
3: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
2: गाना,
3: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
2: अरे अरे।
3: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
2: ऑडिशन से मिली थी?
3: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
2: ओहो,
3: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन

0: में थे उस रोल के लिए,
1: जिनकी नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
0: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ये ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर, तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
0: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके।

0: তোমার নয় তোমার নয় তোমার নয়।
1: ক্যা সুন্দর তো বোল হ্যায়, মতলব অদ্ভুত, ক্যা লাইন হো, কামনা কে ফুল, ক্যা বাত হ্যায়, ক্যা বাত হ্যায়, সুন্দর। তো ইস ফিল্ম নে বহুত নাম দিয়া,
0: হ্যাঁ,
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स के फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था, टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स, तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस,
1: चार पांच धड़कन मिस,
0: बिल्कुल टोटल, और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था, पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना बहुत ठंड होती है वहां, -10, मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी,
1: बिल्कुल
0: इंडिया में वैसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिकलेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो,
0: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स। पर ये
1: तो मजा है,
0: बहुत ही कमाल, और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
0: या बट thankfully later in life this became a norm and life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye dheere dheere ye part of life ban gayi,
1: bilkul bilkul, lekin ye jo
0: this is the beginning, yeah,
1: yes, bilkul, lekin iske baad international films aur unme awards lene aur tareef paane ka silsila lagatar chalta raha,
0: ji,
1: to iske baad kaun si film aayi?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ,
0: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड, फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ, बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके, फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?

0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
1: ये भी
0: हाँ
1: था।
0: प्यार हो गया
1: वाह
0: ये भी था,
1: वाह।
0: दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में। जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक
1: बिल्कुल
0: प्रोफेशनली चलती है वो। लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा। पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे। ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स।
0: बट द थिंग इज, वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम
0: यस
1: किया।
0: किया। और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: वाह वाह, क्या बात है।
0: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
1: एवरीथिंग।
0: या
1: यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको। बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक, यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा।
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रहे वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी, बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ गई। और
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी।
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये
1: अच्छा,
0: सब
1: हाँ,
0: वो इंटरनेशनल फिल्म।
1: करेक्ट,
0: थी। या, या,
1: जी जी जी
0: या।
1: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
0: हाँ,
1: बुनी
0: उसके,
1: गई
0: हाँ।
1: फिल्म।
0: फिर मैंने अन्ना कारेनिया भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल।

0: मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते
1: बिल्कुल।
0: हैं। तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
1: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
0: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
1: बिल्कुल
0: वो भी सुना जा सकता
1: है। वो भी हाँ हाँ वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एनवाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर है वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया।

0: यार तो आप ऐसे ही हो, स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
1: एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला मामला,
0: बट ऐसा नहीं होता है। यू नो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने पार्च्ड
1: मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए।
0: यस, और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन।
1: अरे वाह,
0: यस,
1: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
0: हाँ
1: वाह,
0: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन हम लोग मिले थे लीना और असीम और हम सोच रहे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का। And then she did her research and she wrote the screenplay और ऐसे करके बनी वो।
1: वो एक शानदार फिल्म बनी।
0: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी। और
1: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
0: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सबकी कास्टिंग हुई एंड वी हैड like a very very interesting time, you know, shooting this together, bonding, and humne saath mein banayi is film ko, you know, we all got together and made the film. Russell Carpenter jinhone Titanic shoot kiya hai, he's a cinematographer of Avatars and Titanic, aise bade bade filmon, he shot the film aur ye Aseem Bajaj ki wajah se hai, who's our producer और लीना के पार्टनर भी हैं वो। सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर। वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया,
1: बड़ा हो गया, और फिल्म बात भी बड़ी करती
0: बड़ी,
1: है।
0: हाँ,
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची।
0: यस, यानी लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई।
1: वाह,
0: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स। सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया।
1: बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है।
0: हाँ, तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है।
1: वाह,
0: ही इज अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल,
0: जो
1: अपनी तरह की फिल्में करनी है
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है। और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबू धाबी में थी। आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येलो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है। तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ।
1: वाह,
0: दैट्स ऑल।
1: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह।
0: बिल्कुल कमाल। और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया। एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है।
1: बिल्कुल,
0: यू नो इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। एक्टर तो सबको पता ही है वो है।
1: बिल्कुल, तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है।
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने
1: भी
0: गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई। फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है।
1: अच्छा,
0: पे थी वो और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था। वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था। और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था।
1: अच्छा,
0: आनंद जी, आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ। तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, आई नो व्हाई कांट इट बी अ शी, because he was actually offering me a role in the film but not the central character,
1: right?
0: So he said okay, or main

0: डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. व्हेन आई केम बैक ही सेड कि ओके दीज आर योर डेट्स एंड यू कम एंड या नाउ इट्स नॉट ही इट्स शी. आई वाज लाइक ओके
1: वाह
0: वंडरफुल
1: क्या बात है.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा भाई
1: वो भी उनके साथ है बिल्कुल साथ जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर महिला डॉक्टर
0: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी हाँ,
0: वो की मैंने और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट क्योंकि ये जर्नी थी उसकी और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे च मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो यू नो बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है. एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्म.
0: हाँ उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ. यस
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर आल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है क्या बात है. अच्छा एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया.
0: जी जी जी जी एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी कुछ नहीं था. ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर एवरीबॉडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू आई जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड एनी वे. सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशन पब्लिक में आई यू नो एवरीथिंग वॉज सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
1: वाह बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला और उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल
1: कौन सा गाना होगा.
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है और उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन.
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है.
0: हाँ.
1: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं.
0: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसजी में जब हम थे ना वो तब से गाता था.
1: तब से गाते बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब व्हाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वाज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट randomly gone to my gynecologist to do some checkups. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहाँ उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं

0: है, आप काम करती रही लगातार।
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए?
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यू नो, एंड इट वाज अनरियल। और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वाज, ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माय मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है, हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड अ 9-year-old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती

0: तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड अ 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर. बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल. मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है. मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर, इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नोबडी एल्स, सो हाउ वुड आई डू दिस, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ माई ट्रीटमेंट इज अबनॉक्सियसली हाई. इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूँ, एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस.
1: आप जीती?
0: यस. बट द थिंग इज देयर वर टू मेनी बैटल्स, यू नो, इसमें मैं हील कैसे हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग, एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म,
1: वो तो रखा ही हुआ था.
0: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच्ड द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू, और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल.
0: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन. वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? दैट्स वेन आई रीच्ड आउट. मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसीलिए तो मैंने नाम पूछे हैं.
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है. दिस वाज आवर गर्ल गैंग. ऋचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया, जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, यू नो, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर है. और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है.
1: गजब.
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर
1: जबकि 1.5 साल बीत चुका है.
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सबके बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे. और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI. But it is actually just the touch of a real human being which heals everything.
1: Right.
0: और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके.
1: ये कितना मुश्किल था.
0: So ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी. मेरी बहन मेरी बेटी को

0: अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था. एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ. मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम. पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी. आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट. और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माय फिल्म. आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक.
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए.
0: ये
1: शारे इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल
1: गुजर रही
0: जिस थी. दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी. और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं. फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा.
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है. पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन. उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर.
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम.
0: वेरी डिफिकल्ट. शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप. और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को कहा अभी लिखते हैं हम.
1: वाह वाह.
0: इसी के बारे में लिखते हैं.
1: क्या बात है.
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. तो That evening was incredible, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने. और that was the last evening. मैं एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे.
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा. अपने ही सेल्स है विच हैव गॉन रूग. इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील. ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट. एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले. फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया. और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए. डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया. और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने.
1: क्या बात है. और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया.
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो.
1: पहला शो कब कहां हुआ था.
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ.
1: जी जी.
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया. और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है. और फिर आगे और भी करेंगे शोज.
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए.
0: हाँ
1: सुनते हैं.

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक, सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने, और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे, और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो, आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने कहानी कही है, पर स्क्रीनिंग करवाना, अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो, हाँ उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट, और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ, आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो,
1: जो भी है बस
2: हियर एंड नाउ, कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे, ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है, वी रियली डोंट नो, मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस, हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन, मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट,

0: मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का, मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट, सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तहबे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ। मैं जो कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां, हमारे अड्डे चलते थे वहां, कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए, मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए,
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया properly,
0: yes,
1: कि yes I am going through this,
0: yes I lost a lot of weight, I mean that's a part of my life, I am an artist and I experienced it, I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences, और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तरिशा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में
1: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी, बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ प्ले भी लिख रही हूँ।
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है, अभी ब्रेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ, हमने लिखा है हम एक्टिंग कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट।
1: ओके वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं, बेटी भी सीख रही है स्विमिंग सीख रही है, देन आई स्पेंड टाइम विद हर, खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ।
1: क्या बनाती हूँ?
0: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा खाना आजकल जो हो रहा है मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला, मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से, अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन, उसको सब एफर्टलेसली आता है, इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी।
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ।
0: या
1: बिल्कुल,
0: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है, अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है वो मिनरल्स है और ये मिलेगा
1: पहले ही बोल देती है क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे।
0: बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें जीने के लिए, सफर फिल्म का ये गाना, इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जयरंजी हैं।

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए.
1: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में. और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आई. स्वागत है.
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले.

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
3: जो पहले दिन चला था मैंने कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी शुरू से
4: जी।
3: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है
4: जी।
3: बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बस दुआ ये है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूँ और उनको वो चीज़ें मैं दूँ। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे तो मैं जब आपकी आपके रिएक्शंस सुन रहा था तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफा कर रहा हूँ, क्योंकि हर दफा जब आप कोई चीज करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी
4: जी।
3: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है जो जो शुरुआत में नहीं होती
4: जी।
3: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते नहीं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही you know? या फिर वो नहीं यार वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था you know?
4: खुद से मुकाबला होता
3: है। हाँ फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है
4: जी।
3: तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था उसके साथ मत कंपेयर करो, लेकिन मैं समझता हूं लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है
4: जी।
3: पता नहीं कितने सालों से जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मेरे को ओवरनाइट तो नहीं हुआ था
4: जी।
3: आज
4: जी।
3: अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था
4: जी।
3: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था
4: जी।
3: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है
4: जी।
3: ये नया गाना है इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं
4: जी,
3: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये कि मेरा गाना है नैन से नैन मिला। अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आया
4: ओ,
3: क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट

0: from, for example,
1: what you do normally.
0: हाँ मतलब कि for example कभी तो नजर में आओ भीगी भीगी रातों में तेरा चेहरा मेरी याद रखना and then suddenly lift करा दे
1: जी बारिश
0: and then suddenly नैन से नैन आ जाता जहाँ पे वो classical भी है बीच में and so on so forth तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद है लेकिन वो वक्त के साथ साथ it become a kind of a cult song. वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में. तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं. तो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक नैन सिन्हैन
1: जी,
0: क्योंकि नैन सिन्हैन
1: मेरे तो बेशक
0: हाँ मतलब कि नैन सिन्हैन जब मैंने बनाया था
1: जी
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ मैं बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के पहले तेरा चेहरा था फिर मेरी याद रखना फिर चैन मुझे आए ना गाना था. अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स. तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था. तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए यू नो इसमें राग दरबारी है ये तो बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं राग ही ऐसा है तो आई वाज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड यू नो. तो लेकिन मैंने छोड़ दिया मैंने कहा पर ठीक है यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सारा आंखों पर बंदा करता है यू नो. तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वॉज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड एंड इट वॉज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था
1: जी.
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस. तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ गया
0: वो वापस आया और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर
1: बिल्कुल
0: सो मच सो कि फिर और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात क्योंकि एक होता ना वो एक एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है यू नो. तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूडेड इनटू माय कॉन्सर्ट्स क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं
1: जी
0: यू नो. तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ.
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
0: जी
1: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा?
0: देखिए जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था. एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था.
1: इसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में. I was a kid in London और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे. उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में. तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
1: जी,
0: उसकी रिकॉर्डिंग भी है. तो मैं उस कॉन्सर्ट में था. तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे. तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग फ्यू डेज एज अ हॉलीडे. तो मैं वहां पे गया अपनी वालदा के साथ. तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था. तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था. तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे. तो आशा जी मिली. तो आशा जी को मैंने अपने पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया. उन्हें बेहद पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि एक सेकंड ठहरो
1: पंचम
0: ये तो मैं पंचम को मनाती हूँ ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा. मैंने कहा जी ठीक है. आई यूज टू लव आरडी बर्मन. बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहां पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था

0: लोग अक्सर हीरोज हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है।
1: वाह वाह वाह,
0: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म। और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहां पे मैंने अभिमान देखी, मैंने मैंने यादों की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन। लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है।
1: हाँ, बिल्कुल
0: मुझे समझ नहीं आती, ना ही मुझे कोई बताए
1: जी
0: बर्मन है ना, बस ठीक है मैं देखूंगा। बाद में पता चला कि बाप बेटे, अब समझ भी आता है कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी, वो उसमें एक कॉमन DNA था।
1: यस,
0: यू नो, सो यू कुड टेल। सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई। अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था।
1: हाँ।
0: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा अगर क्या मतलब है
1: जी?
0: अगर से मतलब कि अच्छा, मैं लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी
1: गुस्ताखी
0: कर दे या फिर शक करे उसकी बात के।
1: जी जी,
0: मैं भी फिर जिद में, मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया। Then he would turn around and say, हाँ हाँ अगर तुमने बजाया है तो वो बहुत अच्छा बजाया है। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया है। अच्छा, वो भी उनके अंदर भी एक थोड़ा सा बचपना था। He went into the room next door and he brought out a portable Casio.
1: Just to test you.
0: हाँ, मतलब कि उस जमाने में कैसियोज जो थे ना, उनके सबसे नए निकले थे कैसियो ब्रांड से, which were portable. बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल वंस। अच्छा, वो ही ब्रॉट आउट अ कैसियो, बजा के दिखाओ।
1: ओ हो हो हो,
0: तो मैंने बजा दिया। ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, हाँ तुमने ही बजाया।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा बजाया,
1: क्या बात,
0: यू नो। एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो।
1: मतलब वो इतना नायाब था
0: जी, जी जी,
1: अनबिलीवेबल हो गया था।
0: हाँ,
1: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है वो इतना शानदार बजा सकता है।
0: हाँ, करेक्ट,
1: तो बचपन से आप जादू ही रहे हैं।
0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज, कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनाओ।
1: वाह।
0: तो मैंने कहा यार, मतलब कि क्या बात है, यू नो, आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी। और देखो देखो, प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती हैं कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था
1: जी,
0: यू नो, आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट।
1: यस,
0: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था। एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। एंड आई सेड देखो, ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है।
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी जॉली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी।
0: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज्ड टू बी अ वेरी, मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हसमुख थी और बहुत बबली थी, अपने एटीट्यूड उनका बड़ा जबरदस्त था। और एंड शी वाज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीजों पे, एंड शी वाज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था, अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते हैं गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी।
1: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया।
0: अच्छा, अब मैं, यू नो, मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना
1: जी,
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है? क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा। तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार। अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो, ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज की, हाँ सब ठीक ठाक, देन शी वुड स्टॉप क्वाइट। मैं कुछ और मैं बात बोलूं तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया, ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस क्वाइट। थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शी सेड मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं।
1: ओ,
0: मैंने कहा

0: क्या कर पाएंगे मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सोचियो कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं फिर किधर जाऊं।
1: जी जी,
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक यू नो एंड ऑल दैट, नहीं नहीं समय तुम्हें नहीं पता, यू नो जब भी हम नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है।
1: जी,
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन
1: जी।
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया। अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी, शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल। मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट, मैं पूरा पूरा बताया। अच्छा, वर्षा यूज्ड टू बी अ रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो आई इज लाइक दैट ओनली। मैंने कहा क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये करके उसने ठक कर दी। मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है। श्योर इनफ जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
1: रूप बदल गया,
0: मतलब कि इट वॉज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट।
1: वाओ,
0: शी सडनली बिकेम अ जायंट।
1: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस।
0: सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना
1: जी।
0: माई गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी, आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के इसको 10 और तरीकों से, इट वॉज लाइक दैट। इट वॉज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ। मैं कह रही यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ। आई वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जिसे वो होता ना लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस।
1: वाओ, क्या बात।
0: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है।
1: तो आपको याद आए कि चॉइस थी?
0: ऑफ कोर्स, मतलब कि यार, मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी। हाँ, कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके मतलब कि यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है। तो यू नो आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वाज अ फिनोमेना।
1: जी,
0: शी वाज अ फिनोमेना एंड दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले। यू नो जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती।
1: वाह,
0: आई मीन दैट कुड,
1: कितनी खूबसूरत,
0: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात
1: जी।
0: और कौन इंसान कह रहा है, लता मंगेशकर। दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन
1: जी।
0: तो दैट्स इज व्हाई शी वाज आशा भोसले। लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
1: जी
0: वो इसी प्रोजेक्ट में था। अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है, इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ, इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है
1: जी,
0: यू नो। तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है।
1: वाह,
0: यू नो
1: क्या प्यारी बात।
0: तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है। अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर। तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, व्हिच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग
1: जी।
0: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो। मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं तो सब गोरे हैं, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है। लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो

0: ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते, एक मेरे पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने पूछा है, अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था। ऑलराइट सैमी, व्हाट्स हर नेम? आई सेड लिसन, शी इज अ लेजेंड। या आई नो यू टोल्ड अस बिफोर शी इज अ लेजेंड, या बट व्हाट्स हर नेम? मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा बोल सकते हो, ए आशा, यू नो, मैंने कहा यार ये तो
1: दिक्कत हो जाएगी,
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगी तो फिर मेरा क्या होगा
1: जी।
0: तो मैंने कहा हर नेम इज आशा जी।
1: वाओ।
0: तो he said, but what's the first full name? I said, her name is आशा जी भोसले।
1: What a trick।
0: हाँ, तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले। I said, yeah, okay, fine। और तो वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्हें। तो जैसे आशा जी एंटर हुई, क्या कहते हैं, स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी, और
0: मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं। मैंने कहा बस देख लो आशा जी। आशा जी, कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम, अ लिटिल लाउडर प्लीज। कितने तहजीब वाले हैं ना, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू। तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया। मैं पता कि वो कैसे हुआ। बड़े शैतान हो तुम, उन्होंने मुझे बताया नहीं इस तरह। मैंने कहा शी सेड, एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी, सामी इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना
1: जी,
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी भी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं। तो चीज़ें नहीं, मैं इस तरह की चीज़ों पर बुरा नहीं मानता। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते लेकिन पीछे से छुरा मार देते। तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है। तो बहुत तरह की, बहुत सारी चीजें थी, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर। जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया।
1: क्या
0: बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं। और यू नो, बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका। मुझसे लड़ती भी थी।
1: अच्छा,
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी। अगर मैं लेट से दो चार महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया तो मतलब कि बरस जाती थी।
1: ओ,
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, मतलब सार्कैज़म टू द कोर। एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर, अच्छा अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है। अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया। हाँ हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है।
1: जिससे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती,
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गया ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी। एंड दैट इज अ फैक्ट। She did.
1: क्या बात है?
0: You know, so you know, she would love to, like I said, she was motherly, you know, and उनके साथ कोई तकल्लफ नहीं था
1: जी,
0: उनके साथ वही अपनापन था। और वो भी कई दफा, क्योंकि she used to also be awake till late, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था तो उन्हें सबसे पहले पूछ, खाना खाया तुमने कि नहीं? मैंने कहा नहीं खाया। अच्छा बैठो, जो भी उस वक्त किचन में था अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी। यू नो, लाइक आई सेड, शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी। you know? कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है।

0: मैं खुद ही गा देता था
1: जाहिर है।
0: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसकी थोड़ी देर कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू की क्योंकि और कोई गाता नहीं था तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज में रखो
1: जी।
0: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया सवाए मेरे के मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स इंस्ट्रूमेंटल हो
1: ऑफ कोर्स
0: यू नो एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच।
1: यस।
0: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की। मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है
1: जी।
0: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी। तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच टू एवरीथिंग दैट आई डू। आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही
1: जी,
0: उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
1: तो अफसोस होता है,
0: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा
1: जी। लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
0: अच्छा लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ
1: जी जी।
0: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी
1: लेकिन वापस रिवाइव हुई।
0: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या
1: जी,
0: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे विच वॉज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है
1: जी।
0: अच्छा उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
1: बहुत।
0: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
1: खूब चली।
0: अच्छा जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल
1: जी,
0: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन immediately, it affected the
1: sales of the music.
0: Sales of the music, but by that time, वो पार हो चुके थे.
1: जी जी.
0: They were already declared a super hit because the people loved the songs. ठीक है ना? तो अब that was one of those very few examples in history, musical history, कह लो whatever, कि जहाँ पर the movie didn't do well, but the soundtrack did really really well.
1: Yes. लोग आज भी याद करते
0: हैं. हाँ, लोग आज भी याद करते हैं. हालांकि कभी-कभी ऐसा भी होता है. अब जैसे कि पंचम दा का शोले.
1: जी,
0: he got the maximum amount of awards and sales because of Shole. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Shole is not my best piece of work.
1: Of course, that's the truth.
0: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
1: जी,
0: but because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
1: everything.
0: Everything.
1: Yeah.
0: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंड ट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका.
1: जी.
0: And it was, you know, it was. People were confused कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time, and overnight the music suddenly became a sensation because

0: the visual and the story line attached to the songs, but they were very situational songs. So now people understood those songs.
1: Mm.
0: They understood the context.
1: Right.
0: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, I loved the songs even before the movie was released.
1: जी,
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए.
1: वो एक सेपरेट एंटिटी,
0: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ. मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है.
1: जी,
0: गाने जो है वो रहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इजी. यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना,
1: राइट?
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर

0: क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है
1: जी,
0: गाने जो है वो रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी, यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना,
1: राइट,
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर, यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर, ऑफ कोर्स टुडे you have the mobile phones and all
1: still,
0: that lekin phir bhi
1: ji.
0: You don't have the time to watch a film all the time
1: ji.
0: But music stays with you, music always stays with you and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet,
1: right, very
0: ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti, kabhi bhi banda kehta hai yaar काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता
1: पल पल दिल के पास
0: पल पल दिल के पास मुसाफिर हूँ यारो
1: जी,
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैं सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन, बट यू नो सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी, सो देन यू नीड द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha.
1: और
0: उसका मेन कैरेक्टर जूली था, लेकिन आज भी आप अगर सुनो कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है
1: जी,
0: भूल गया सब कुछ क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है.
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं.
0: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट.
1: रिलीज इन 1975.
0: वाओ, देयर यू गो. तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रेकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे
1: जी
0: कॉम्पाइलेशंस में और इस तरह से. तो वो गाने जो थे यू नो बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे, और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन. अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ
1: जी, ये आज के जमाने.
0: हाँ, आज के जमाने. तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ. तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था. तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड, यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कॉम्पोजिशन.
1: राइट,
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कॉम्पोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कॉम्पोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग.
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है
0: जी,
1: जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है.
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ
1: जी.
0: तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच टू इट. जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा
1: जी.
0: मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर, लेकिन कम अज कम लोगों ने सुना तो सही. लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं, और वो पहले से डूब गया. अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कहा यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ बढ़ा,
0: ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो. अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ.
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, दिस रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां
1: जी.
0: The film, I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan. और उसमें बड़े interesting किस्म के गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं आज भी
1: जी.
0: And मुझे बड़ा उससे बड़े बड़ा दुख हुआ
1: कि फिल्म नहीं चली,
0: कि वो फिल्म नहीं चली, और लिहाजा वो गाने जो थे वो रह गए. लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. अगर आप उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी व्हाई मे बी आई एम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दोस.
1: एंड लकी के कौन से गाने की बात
0: सुन जरा. मैंने कि सुन जरा आई लव्ड, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई लव्ड सो मेनी ऑफ द सॉन्ग. आई लव्ड शायद ये तो प्यार है, क्योंकि मेरी पहली मर्तबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ
1: जी.
0: तो जो एक अगेन वो एक ख्वाब था मेरा.
1: कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी.

0: लता जी के साथ अगेन एक जो एक्सपीरियंस था वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मरतबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी। और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का और गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो आई वॉज वेरी नर्वस। और अच्छा पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस,
1: यस
0: दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मैंने उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। उनको पता है। और जो उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी,
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको ईज कराते हैं, यू नो, टू मेक यू रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं,
0: उनको पता है। तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको काम डाउन करें। तो अच्छा अब क्या हुआ कि मैं पहली दफा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था, कहाँ जिस इस तरह की जो चीजें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो देयर वाज नो सच थिंग। तो मैं अपने ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्हें कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया, मैंने कहा हाँ जी लता जी कैमरामैन, आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कोई, अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले। हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ।
1: अरे गजब,
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त। शी वॉन्टेड मी टू हैव दैट मेमोरी,
1: वाओ,
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है
0: आप, मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट, एंड आई एम जस्ट आई एम अ किड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी।

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है
0: जी।
1: मतलब कि उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक कि व्हाट वाज द प्रोसेस कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: अपने आप।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओ इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे

क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने तीन चार वर्जन किए थे. अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है. तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है. तो वो तो Course, he's a master at that. तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे that we used to literally flip a coin कि कौन सा शॉट रखे, क्योंकि we didn't know which one to keep. Right. You know, because they were so, all so good and different in their own way. He would give us every shot, he would give in a different way. So, wo unke saath kaam karke jo experience mila was something that was absolutely priceless. And I learned so much from all of these people. And it was such an incredible pleasure.

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं।
1: इश्क तमाशा।

0: वाह वाह वाह वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे।
1: बेशक।
0: तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे।
1: जरूर आऊंगा, विद प्लेजर, विद प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे।
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर,
0: और इंस्पिरेशन की, आपके फेवरेट गानों की,
1: ऑफकोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंगे कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार रांची।
1: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानिंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानिंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थी। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है, लीजिए सुनिए ये संदेश।
4: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर STD कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
5: Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam, zubi dubi nache, kyun pagal stupid man.

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है, नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयालम।

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

0: लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। जयपुर में भारत की ब्रिक्स

अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में शिरकत कर रही हैं। बैठक में आर्थिक विकास, वित्तीय उदारीकरण और जोखिम प्रबंधन के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने उभरती चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। बैठक का समापन कल होगा। आज शाम प्रतिनिधिमंडल के लिए जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अतुलनीय रहा है। मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर प्रदेश भर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानकारी देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। स्वाधीनता दिवस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने विशेष ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सीमा क्षेत्र में कैमल पेट्रोलिंग और पैदल गश्त भी बढ़ाई गई है। रात के समय सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नाइट विजन उपकरण और थर्मल इमेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर ओर तिरंगी छटा देखने को मिल रही है। तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पाली में ग्रामीण क्षेत्रों और विद्यालयों में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि जिला मुख्यालय को तिरंगे से सजाया गया है। 12 में जिला कलेक्टर ने घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। जिले में 1.5 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। भरतपुर में तिरंगा प्रदर्शनी और जागरूकता शिविर में खादी, हस्तनिर्मित तिरंगे और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को स्वदेशी उत्पादों के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज मनाया जा रहा है। युवाओं के नेतृत्व, उनकी विविधता और सतत विकास लक्ष्यों में उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र ने इसकी थीम विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं रखी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी और उज्जवल भविष्य की आधारशिला होती है। राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में आज हरियाली अमावस्या का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और पशुओं को हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया जा रहा है। कई स्थानों पर मेले भर रहे हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या मेला फतेह सागर पाल और सहेलियों की बाड़ी में शुरू हुआ। 2 दिन के इस मेले में आज सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कल महिलाओं के लिए प्रवेश रहेगा। उधर कोटा में इस मौके पर गेपरनाथ महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर विशेष जलाभिषेक किया गया। सिटी पार्क में लहरिया महोत्सव में महिलाओं और छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। सवाईमाधोपुर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रामेश्वर स्थित त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही पुराने शहर में पतंगबाजी की जा रही है। पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदस्यों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य पुलिस और आमजन के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहां कीजिए जहां हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है, एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गाँव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं, कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द, पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए, फिल्म है आदमी और इंसान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले, एक श्रोता ने ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं, और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरे करने का इंतजार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो जरूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार की निशानी उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियां लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद

कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रहीं। कहानी सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियां आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें। मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए। प्रेम में बड़ी ताकत होती है, सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़े और आपको सुनवाएं अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है, तो वो भी बताइए। श्रोताओं ने वो भी बताया है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपने यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में जरूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे, मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा, जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

0: महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे, तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुँचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफर में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफर। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।
1: कुछ

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बाबरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है, हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वहाँ पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, ज़रा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज़ के पीछे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज़ और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बुझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

0: जिसे और कभी लड़ते भी है
1: ऐसे। किनारा फिल्म का गाना था, भूपेंद्र हेमलता हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी नहीं।

नहीं थी इसलिए गाना सुनवाया, और एक गाना अभी जरूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया। देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना सुना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूँ जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबे दा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो जरूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छांव में बैठकर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएं फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। बस वो संवाद जो होता है मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हुआ, सुरीला सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा।

0: अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यूरो हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अप

0: अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं।
1: कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
2: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
4: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों

0: में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: परख फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कहना। गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। लिखा था इसे साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, नीरज की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने उद्घोषणा की थी बहु बेगम फिल्म के गाने के लिए, लेकिन हम माफी चाहते हैं, वो गाना हम नहीं सुनवा सके, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से नाराज थे। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है, आज्ञा दीजिए ममता सिंह को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल आपका

0: जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार
0: लिया है। और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं, और हेल्थ का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना, घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है, किसी को
1: खांसी
0: हो गई है, कहीं बुखार है, तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना, तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है,
1: ये संभल जाती है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा, उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है, तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही देखो ना, ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ, बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
1: मेरा तो मन करता है।
0: बिल्कुल, तो वैरायटी सबको चाहिए, एक विविधता होनी चाहिए ना, सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
1: हाँ, और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना, तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं, तो उसके व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने लिख कर भी भेजे हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसी ने डोसे का लिखा है, किसी ने उपमा लिखा है, तो किसी ने खीर लिखा है। तो आप भी लिख कर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं, और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
0: बिल्कुल, और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
1: मीठा होता है।
0: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा, तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा। और यही शब्द है हमारा आज
1: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके, इसमें मेहनत है। यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
0: बिल्कुल। और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे,
1: चट से पहन लेंगे।
0: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है, और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में, परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां, कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है, और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
1: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है।
0: जी,
1: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने, हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, उन सभी को, उनकी ऊर्जा को सलाम, और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें।
1: जी,
0: और अब हम क्या करें,
1: गीत सुनते हैं।
0: चलो।

0: सुना ली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियाँ जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियाँ इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आते।
0: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष है जहाँ आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गाँव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर है, तब भी माता पिता को ये लगे जहाँ भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी।

0: सोनाली, इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है, और आप क्या किया जाए।
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
1: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इकत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंद कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है ये वाली साड़ी। हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं, अगर कॉटन पसंद है तो वो ले सकते हैं, सिल्क पहनना चाहती है तो वो ले सकते हैं। आप चाहे तो इस साल की दिवाली या बड़े उत्सव, कोई बड़े उत्सव के लिए भी इस साड़ी को ले सकते हैं। तो प्राइस रेंज अगर आप बोलें कि किस प्राइस में आती होंगी, तो 2,500 से 25,000 के ऊपर तक ये साड़ी मिलती है। तो जितने शुद्ध रेशमी धागे उसमें बढ़ते जाएंगे, वैसे ये साड़ी का दाम बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
1: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में, बाजारों में दिख रही है। साड़ियां, चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वहीं हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं।
0: हाँ,

0: कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं, तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली आपका इशारा समझ गए, हम मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिला यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सहारा पेपर

0: हमारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और
1: बिल्कुल।
0: बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर जो निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ने ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है। यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियाँ भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं, तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है। ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया के खबरों से जोड़ता है, बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है, तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल। और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव

0: धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है, तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल। और ये संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है?
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन
1: मोबाइल स्क्रोलिंग से करना है
0: उतनी नहीं। अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल

0: जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है। उस अखबार मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था। दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे, बस बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
1: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
0: और साथी कहते हैं
1: जी
0: ये पढ़ना चाह रहे,
1: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
0: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
1: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
0: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती हैं, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और धन्यवाद कहते हैं।
1: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में।

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक। सब्जियां लेनी है, प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भुने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भुने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की, जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन

0: ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में उस इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और एक
0: एक
1: और संदेश देखिए, ये एक छोटा सा छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
0: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने। कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
0: और अब क्या करना है?
1: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी

0: कहते करता हूँ वहां पे, तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नवीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि दबता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था, अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स है उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो छह महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो छह महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने छह महीने से उंगलियों पे गिने, छह महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि छह महीने ऐसे नहीं होता है, छह महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने छह महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो छह महीना अगर काउंट करेंगे तो वो सात महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन छह महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉइंस बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था, रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी छह महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया, कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो।
1: हाँ,
0: मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा डेढ़ घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के सीडी पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक

0: ना कोई आया ना कोई आएगा, तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए तो बोलिए कौन सा गाना होगा।
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं तो, तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म शंकर जयकिशन।
1: हाँ बिल्कुल
0: शैलेंद्र।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे

0: तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस
0: राहुल
1: जमाने
0: और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे। तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। कीकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, 2 3 4 बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4 5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8 9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश में,
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग,
1: हैं।
0: तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी। हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2 3 एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा

0: किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब, हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1.5 साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जी, बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके okay.
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं। ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
0: बिल्कुल, वो सिनेमा की

0: बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
1: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्कॉर्ड आंसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें? तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
1: उन्होंने ऐसे बात शुरू की, राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है? तो मैंने मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
0: आता है इसको,
1: इसको कुछ तो पता है अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मसी नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला। मैंने कहा समुराई कला कैसे सीखे, रैपिड एक समुराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे। तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड
0: आएगा। हाँ।
1: तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
0: लिखने,
1: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं, मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना,
0: बिल्कुल
1: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना, ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कानून
0: छूट जाते हैं,
1: लूज ऐसे ऐसे छूटते हैं जो बाद में आप ना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
0: बिल्कुल,
1: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो।

0: मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरी जंका, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था, मेरी जंका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल,
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई एम टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस, यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेकिला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।

खोल, दिल में जाने दे मुझको।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थी और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह वाह।
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना,
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
0: बिल्कुल,
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वरना सब सब सब सब रोमन में पढ़ते
1: हैं, में पढ़ते हैं।
0: जी।
1: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे, तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां

0: एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो
1: क्या भैया,
0: एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में, ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने। अस्त्रा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। तो बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो डॉट 11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे, जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में कहीं
1: जाती है।
0: कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स ही छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला। हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई,

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। एक साइकिल है, चक्र है। तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनाने शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल। तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: चाचा चौधरी पे शोभा। हाँ, मतलब कई
1: बार डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म। एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है।
0: हाँ,
1: तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिनपे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनपे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है।
0: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
1: शुक्रिया विनोद भाई। मैं जैसा कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है। तो मेरे लिए घर वापसी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और क्या कहूँ मैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं
1: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
0: आज के मेहमान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे, 18 अगस्त।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महिला जगत कार्यक्रम में किरण का नमस्कार। किए गए वादे के अनुसार हम उपस्थित हैं आपके समक्ष लेकर कार्यक्रम का पिटारा। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत बहुत खुश होंगे। आज कार्यक्रम में आपसे चर्चा होगी, जानकारी हम आपको देंगे स्किन केयर के बारे में और आपके पसंदीदा गीत संगीत होंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम और आप मिलकर करते हैं कार्यक्रम का आगाज। अधिकार मुझे है याद सब, फिर कर्तव्यों को क्यों भूलूं? कर्तव्यों की राह पकड़ में जीवन के शिखरों को छू लूं। एहसान बहुत है हम पर इस धरती के, जिस पर हमने जन्म लिया, सांस सांस में भारत बसता, सोचो हमने इसे क्या दिया। यह चिंतन हर चित्त में उभरे, बहे विचार की ये पवन, कोई भी इंसान फर्ज न भूले, देश बने खुशहाल चमन। बहनों, एक जागरूक नागरिक वो होता है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को भी समझता है और देश के प्रति अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी को पूरा करता है। यह हमारे राष्ट्र के प्रति निष्ठा, समाज में सद्भाव और देश के विकास में सक्रिय योगदान से पहचाना जाता है। जागरूक नागरिक वो होता है जो हमारे संविधान और प्रतीकों का भी सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय गान और संविधान के आदर्शों का आदर करे, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और जरूरत पड़े तो देश सेवा के लिए मर मिटने को भी तैयार रहे तथा जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए भी तैयार रहे। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, जीवों के प्रति दया भाव अपने मन में रखे, हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, उसकी रक्षा करे। जो जागरूक नागरिक होते हैं उनकी पहचान होती है वो धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठ के आपसी भाईचारा बढ़ाते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ प्रथाओं का त्याग करते हैं, यानी भाईचारा और समरसता बनाए रखते हैं। प्रत्येक माता पिता जागरूक नागरिक तभी कहलाएंगे जब वो अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दिलवाएंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के

अवसर प्रदान कराएंगे, अपना दृष्टिकोण, नजरिया अपना वैज्ञानिक रखेंगे और अपना दृष्टिकोण अच्छा रखेंगे, मानवता और सुधार की भावना अपने हृदय में रखेंगे। और हाँ, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, बल्कि अपने आप से ही शुरुआत करनी चाहिए। रोजाना की छोटी छोटी आदतें, जैसे घर में पानी बचाकर, बिजली की बचत करके, कचरा सही जगह पर डाल के, गीला कचरा अलग जगह और सूखा कचरा अलग जगह। कई बार होता यूं है कि कोई कांच का गिलास या कांच का बर्तन टूट जाता है और हम उसे सभी के साथ कचरे में मिला देते हैं और उसे जंगली जानवर या गाय पशु कोई खाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो यदि ये फर्ज भी हम निभाएंगे, गीला कचरा अलग करेंगे, सूखा कचरा अलग करेंगे, कचरे की गाड़ी जो सुबह आती है उसमें अपना कचरा समय से डालेंगे, तो वो भी हमारी देश के प्रति सेवा है। सखियों, जरूरी नहीं कि देश सेवा हम बॉर्डर पे लड़ाई करके ही देश की सेवा करें। सही सेवा अपने आसपास से, अपने पास पड़ोस से, बल्कि अपने घर से, अपने आप से ही हमें शुरू करनी है। घर के बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों का, अपने से जो भी छोटे हैं उनका सम्मान करना है, अपने आसपास सफाई रखनी है। ये सभी बातें ये दर्शाएंगी कि हम एक जिम्मेवार, एक जागरूक नागरिक हैं। उपयोग के बाद हमेशा नल बंद करना कभी ना भूलें। पौधे लगाएं, बिजली जितनी यूज कर रहे हैं उतनी ही यूज करें। यदि आप कमरे में नहीं हैं तो फालतू में पंखा ना चलने दें। और ये सब बातें हमें बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि बच्चों की जो पहली पाठशाला होती है वो घर ही तो होती है। बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ कम करेंगे, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करेंगे, घर के काम काज में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हाथ बटाएंगे, तभी तो कहलाएंगे हम एक जिम्मेदार नागरिक। घर के पास जाने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करेंगे, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का ध्यान रखेंगे, हेलमेट लगाना है और साथ में हेलमेट का बटन भी लगाना ना भूलें। कई लोग हेलमेट तो मजबूरी में सर पे रख लेते हैं लेकिन वो बटन लगाना भूल जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। मोहल्ले या समाज के कार्यक्रमों में मिलजुल कर हिस्सा लेना है। ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं कि हम अपने मौलिक कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं, जागरूक हैं, हम समझदार हैं। केवल अधिकारों पर ही नज़र नहीं रखनी है, हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना है। और अब हमें यहाँ लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि बातें हम आपसे लगातार किए जा रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

पूरे जोश और उम्मीद से भरा गीत सुनके लगता है आपको भी जोश आ गया होगा। जिन भी श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है उन्हें भी हमारा स्वागत है, उन्हें भी हमारा नमस्कार है और कार्यक्रम में स्वागत है। हर वर्ष 12 अगस्त यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और अब हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर। इसे मनाने की घोषणा तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 ही हो गई थी। वैश्विक मुद्दों के समाधान और विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का दिन युवाओं

के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा का अवसर देता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण और सामाजिक बदलावों में युवाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की विशेष थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। ये थीम दुनिया भर के युवाओं की अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बावजूद उनके एक जैसी उम्मीदों और सपनों को जोड़ती है। आज के युवा जलवायु परिवर्तन से लेके डिजिटल नवाचार और सामाजिक उद्यमिता तक हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। चुनौतियों का सामना भी युवा जो हैं वो कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा की कमी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आज भी युवाओं के सामने बड़ी बाधाएं हैं। सरकारों और समाजों का दायित्व है कि वे युवाओं को उचित अवसर दें, कौशल प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि युवा एक बेहतर और सतत भविष्य का निर्माण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर के युवाओं की शक्ति, क्षमता और संभावनाओं के रूप में जश्न मनाने का दिन है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति युवा पीढ़ी है, इसलिए युवाओं की आवाज को सम्मान, अवसर और सशक्त मंच मिलना बहुत जरूरी है। आज के समय की जो बात है वो ये है कि युवाओं को एक अच्छा, सच्चा और सुलभ मंच मिले। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बदलाव की शुरुआत करो और युवा कल के नेता नहीं बल्कि आज के बदलाव लाने वाले हैं। अपनी सेहत पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। उम्र आपकी सफलता और असर को नहीं रोक सकती, लेकिन सपनों की उड़ान आप भर सकते हैं। आप सपनों की उड़ान भरो, ऊर्जा और लगन से काम करो। आपके पास नई सोच और कुछ कर दिखाने का जोश है, जज्बा है, ताकत है, उसका इस्तेमाल करो। इसी से एक मजबूत समाज बनता है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। रात को सोने से पहले खुद से पूछें कि क्या आज आपने अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाया है। मुश्किलों से डरना नहीं है बल्कि उनसे लड़कर और मजबूत होकर बाहर निकलना है। अपनी आवाज का, अपने विचारों का, अपनी सोच का सही जगह और सही वक्त देखकर इस्तेमाल करना है। अपने हुनर को एक पक्का मकसद देना है। आइए मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर युवा शिक्षित, सशक्त, सृजनशील, समर्थ हो, उनके हर सपने को नई उड़ान मिले। युवाओं के सपने, सामर्थ्य और ऊर्जा को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।

उम्मीद है सखियों को गीत बहुत पसंद आया होगा। सखियों, गीत के साथ ही हम बात कर रहे थे कि आज हम चर्चा करेंगे ग्लोइंग स्किन हेतु स्क्रब कैसे बनाएं। सखियों, चमकता हुआ चेहरा भला किसे अच्छा नहीं लगता। चमकता चेहरा आंतरिक आनंद, अंदर के स्वास्थ्य और प्रेम को संतुष्टि का प्रतीक माना जाता है। चेहरे का निखार केवल बाहरी सुंदरता बिल्कुल नहीं है, बल्कि मन की खुशी, मन की प्रसन्नता का आईना है। हमारे हिंदी जगत में कविताओं और शायरियों में चमकते चेहरे को अलग अलग भावों से जोड़ा गया है। जब हमारा मन तनाव मुक्त होता है तो उसका असर सीधे चेहरे पर चमक के रूप में दिखाई देता है। अच्छी जीवन शैली, खान पान और सकारात्मक सोच, इन सभी से त्वचा पर जो ओज आता है उसे ग्लो कहते हैं। आनंद और अपनेपन की जो भावना है वो चेहरे के सौंदर्य को और बढ़ा देती है। बाहरी चमक के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक योग या कोई भी एक्टिविटी हो वो अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करनी है। हम ये नहीं कहते कि सखियां सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग ना करें, करें, लेकिन ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अधिक जैसे पानी बार बार पीना और शारीरिक योग करना, कोई भी एक्टिविटी आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें या फिर डेली एक घंटा मॉर्निंग वॉक करें, आप योगासन भी कर सकती हैं। यदि योग करने का समय नहीं है, आप सर्विस करती हैं, तो आप 5 से 7 मिनट प्रतिदिन अपनी छत पर ही टहल सकती हैं या कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं। हम सभी जानते हैं आंतरिक खुशी चेहरे पर असली निखार लाती है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अब हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज हमें आपको बताने हैं ग्लोइंग स्किन के लिए स्क्रब। तो आप अपनी स्किन की ज़रूरत के हिसाब से नेचुरल

या बाजार में मिलने वाले स्क्रब भी चुन सकते हैं। स्किन की चमक बढ़ाने के लिए कॉफी, शहद या ओट्स जैसे स्क्रब बना सकते हैं। ड्राई स्किन यदि आपकी है, सूखी त्वचा है, तो मलाई, शहद, एलोवेरा या क्रीम जो बेस है वो वाले स्क्रब आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जो नमी को बनाए रखते हैं। यदि हमारी बहनों की ऑयली और डल स्किन है, तो बहनें कॉफ़ी और शहद या कॉफ़ी और दही का स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो हमारे जो डेड सेल्स हैं उनको हटाकर नेचुरल ग्लो देती है। हफ्ते में केवल 2-3 बार ही स्क्रब करना है। चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। स्क्रब के बाद चेहरा धोकर मॉइस्चराइज जरूर करना है और कोशिश करें किचन से ही जो टिप्स हैं वो अपनाकर घर पर नेचुरल स्क्रब बनाएं और इस्तेमाल करें। कोशिश करें घरेलू टिप्स आजमाएं। कुछ भी ट्राई करने से पहले अपनी स्किन पहचानें तभी इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी की जो त्वचा है वो अलग होती है, सबका बॉडी सिस्टम अलग होता है, इसलिए कोशिश करें नेचुरल चीज़ें अपनाएं। और ध्यान रखें, यदि आप अपने खान पान का समय समय पर ध्यान रखेंगी, खुश रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, समय पर नींद पूरी करेंगी, मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत अनुसार ही करेंगी और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगी, तो चेहरा खुद ब खुद चमकेगा और लोग पूछेंगे कि आखिर आपकी खूबसूरती का राज क्या है। तो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और हम और आप मिलकर सुनते हैं खूबसूरती पर ये प्यारा सा गीत।

आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला, वक्त न जाने कब पंख लगाकर उड़ गया। फिर मिलने का आपसे करते हैं वादा और आपको करना होगा वादा। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और हमारा कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहें। आपकी रेडियो सखी किरण को यही कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त कनिका। आइए शुरू करते हैं हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
0: फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत है आपका। आपका नाम?
2: दीपांशु।
0: दीपांशु, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, आप बताओ।
0: जी मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज इंटरनेशनल यूथ डे है, 12 अगस्त 2026, आप जानते होंगे।
2: जी
0: तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप युवा श्रोता है ना?
2: हाँ जी।
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिलहाल आप क्या करते हैं?
2: जी मेरी फैक्ट्री एंटरप्रेन्योर बिजनेस है।
0: अच्छा, आपकी फैक्ट्री है, क्या बात है, आपने इतनी कम उम्र में फैक्ट्री जो है शुरू की है। यही बात हमारा आज का मुख्य विषय भी है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, विभिन्न संदर्भ साझा आकांक्षाएं, कि जो युवा हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन सब की एस्पिरेशंस अक्सर, चाहे इंटरनेशनली कहीं भी देख लीजिए, युवाओं की एस्पिरेशन जो है सेम ही रहती है कि इस उम्र में जो जोश होता है कुछ कर दिखाने का हौसला, तो उस अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि आपने क्या जो चुनौतियां हैं क्या फेस की और किस तरीके से आपको लगा कि नवाचार ने आपको कितना हेल्प किया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या कुछ मॉडर्न चीजें हैं उससे आपको कोई हेल्प मिली?
2: जी, सबसे पहले तो हमारा फैमिली बिजनेस था ये, बट आफ्टर, मतलब जब एक बड़े फैक्ट्रीज को छोड़ देते हैं कि भाई नई जनरेशन आके संभाले,
0: जी
2: युवा जो होती है वो आके संभाले, तो उनके बीच काफी एक तो प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अपन को क्या, एक युवा जब अपन होते हैं तो अपने में एक जोश होता है कि कुछ कर दिखाना है और एक इनकम, मंथली इनकम जनरेट करनी है, तो उस अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स काफी सारी आती है। भाई एक नए एनवायरनमेंट में अपन शिफ्ट होते हैं, स्टार्टिंग में सारी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और एक अपनी आने वाली नई जनरेशन है तो उसको टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ा के कैसे अपन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने
2: कही। कैसे इनकम और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू।
0: क्या बात है,
2: पहले हमारा बिजनेस जो होता था वो खाली हमारी टेरिटरी तक होता था।
0: जी,
2: तो एज अ यूथ हमने उस बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया।
0: क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस।
2: स्टेट एक्सपेंड करा और उसके बाद हमने कंट्री टू कंट्री एक्सपेंड करा एक्सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि हम यूथ है, हम ग्रेजुएट है तो हमने नई नई टेक्नोलॉजीज में पढ़ा हुआ है।
0: जी,
2: तो काफी प्रॉब्लम्स भी आई स्टार्टिंग में एक नए रूटीन में शिफ्ट होने में और स्टडीज, ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस को एकदम से संभालने में, लेकिन यूथ में वो पावर होती है कि वो कुछ कर सकता है।
0: बिल्कुल, तो आपने सही कहा, पॉजिटिविटी की पावर यूथ के अंदर होती है कि वो कर दिखाने का जुनून रखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कांग्रेचुलेशंस, आपकी जर्नी तो काफी

0: इंस्पायरिंग है एज अ बिजनेसमैन. आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आप बधाई के पात्र हैं. आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: है जुनून सा.
0: अच्छा, न्यूयॉर्क मूवी से. चलिए आपकी फरमाइश को अभी पूरा करते हैं. कॉल करने के लिए धन्यवाद.

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
0: नमस्ते मैम, थैंक यू।
1: जी नमस्कार, आपका नाम?
0: मेरा नाम वंशिका।
1: वंशिका जी, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल बढ़िया हैं, आप बताइए मैम।
1: जी मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप करते क्या हैं?
0: हम मैम जॉब भी करते हैं, साथ में स्टूडेंट है, स्टडीज भी चल रही है।
1: जॉब भी करते हैं साथ में स्टडी भी करते हैं, जॉब क्या करते हैं आप?
0: मैम जॉब मतलब एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं, स्टडीज तो चली रही है लेकिन साथ में जॉब भी जरूरी है, देखो एक कर लेते हैं।
1: जी तो मतलब आज इंटरनेशनल यूथ डे है जैसा आपको पता होगा, तो एज अ यूथ जो है आपकी एस्पिरेशन बहुत अच्छी है कि आपको काम करना है, अपना करियर बिल्ड करना है, लेकिन इसमें किस तरीके की आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ती है और किस तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे।
0: हाँ बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूंगी आपको कि
1: जी
0: मैं जॉब करती हूँ, जैसे मैं ना मैंने टीचिंग भी करवाई है, मैं एक योगा नेशनल प्लेयर रही हूँ तो मैं योगा भी सिखाती हूँ।
1: क्या बात है।
0: और साथ में हाँ, और मैं साथ में एक कोरियोग्राफर भी हूँ।
1: वाओ।
0: और साथ में मेरी स्टडीज भी चलती है।
1: वाओ, तो ये है हमारे देश के युवा जो अपने करियर को, अपनी स्टडीज को, अपनी हेल्थ को, सब कुछ साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे में क्या चुनौतियां फेस करते हैं और क्या हेल्प आपको, सपोर्ट सिस्टम आपका क्या रहता है?
0: मैम देखो सीधी सी बात बताऊँ ना, मतलब हिस्ट्री के लिए ना एक नौकरी इतनी जरूरी है कि उसे लगता है कि नौकरी करना ही ना उसकी आजादी है, मतलब उसने अपनी आजादी में अपनी नौकरी चुना। वो इतनी बंदगी रहती है तो। और दूसरी चीज ये कि जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, निखरने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें ना दबाने वाले जैसे सोसाइटी बहुत ज्यादा आती है,
1: सोसाइटी का प्रेशर
0: बहुत ज्यादा।
1: किस तरीके की बातों को आपको फेस करना पड़ता है, मतलब क्या ऐसा रहता है लड़कियों के साथ में?
0: सबसे पहली चीज तो कॉमन सी, अरे लड़की है क्या जरूरत है, कर तो रहा है, लड़का है तो गया साथ में। अरे लड़की है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोगों ने ऐसे डिसाइड कर दिया।
1: जी आपके भी बिल्कुल एक्सप्रेशन, आप इतनी मेहनत करते हैं
0: तो इस तरीके की बात होती है।
1: जी इस तरीके की चीजों के साथ आप कैसे डील करते हैं? मतलब
0: डील तो ऐसे ही है कि ठीक है, घर वाले साथ में सपोर्ट करते हैं, हम हमें पता है हमारी क्या कैपेसिटी है, हम इतना कर सकते हैं तो हम करेंगे, हम क्यों हमारी चीजों को या हमारी एबिलिटीज को दबाएं।
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पेरेंट्स आपको कंफर्टेबली आप भी काम कर पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए और नेगेटिविटी को आप कट ऑफ कीजिए, अवॉइड कीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। तो यही आपका माइंडसेट है?
0: बिल्कुल मैम।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
0: हाँ एक चीज और पता है, आज हमने बहुत दिनों बाद कॉल और आज हमें बड़ा मजा आया आपसे बात करके।
1: क्या बात है, हमें भी आपसे बात करके बड़ा मजा आया। क्या फरमाइश है बताइए
0: मैम? हमें ना वो शाम शांदर का जो टाइटल ट्रैक है ना
1: जी,
0: वो वाला गाना सुनना है वो।
1: चलिए आपकी फरमाइश को हम अभी पूरा करते हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: ओके मैम, बाय
1: बाय।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत है आपका।
1: थैंक यू
0: जी। आपका नाम?
1: राकेश।
0: राकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: अलवर से।
0: अलवर से कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है
0: जी। आप जानते होंगे आज है इंटरनेशनल यूथ डे।
1: मालूम नहीं था, अब पता चला है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आपके जो है आसपास आप युवा हैं या आपके घर में युवा है? मुझे आपकी आवाज़ काफी मैच्योर लग रही है।
1: मैं तो युवा नहीं हूँ। हाँ, बच्चे युवा हो चुके हैं।
0: तो राकेश जी, आप जरा ये बताइए कि आज के जो युवा है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या अवसर है, किस तरीके से उनका जो वर्किंग पैटर्न है वो आप लोगों से अलग है?
1: आज के युवा पहले से काफी अलग हैं। समय के साथ बदलाव है तो होता ही है कुछ ना कुछ बदलाव के साथ। पहले के युवाओं से आजकल के बच्चे ज्यादा अच्छी शिक्षा पाते हैं
0: जी,
1: और उनसे भी ज्यादा पढ़ते हैं। पहले 10वीं 12वीं पढ़ लिया करता, फिर बीए बीकॉम पढ़ा करते हैं। आजकल उससे भी ज्यादा डिग्रियां हो गई है। कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है
0: जी,
1: कोई बीएड कर रहा है। तो फील्ड बहुत व्यापक हो गया है पढ़ाई लिखाई का भी, फिर जॉब का भी व्यापक हो गया है। जॉब भी आजकल हजारों तरह की हो गई है। कोई इंटरनेशनल कंपनी में जा रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, कोई खुद का प्रोफेशन कर रहा है। उसमें भी बहुत वैरायटी हो गई है, यानी कि जिस फील्ड में सोचे उसमें अनंत संभावना है
0: जी। तो क्या इससे आपके घर में जो युवा हैं उनको कभी कंफ्यूजन हुई या उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही? किस तरीके से उनको डायरेक्शन मिलती है, क्या वो करते हैं, थोड़ा उनके ऊपर आप थोड़ा सा

0: बताइए हमें।
1: मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल का युवा कंफ्यूज ज्यादा है कि हमें क्या करना चाहिए, यानी एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, कभी कुछ कभी कुछ। क्यों, कारण क्या है कि जब चारों तरफ तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं तो उसमें ये कर लूँ वो कर लूँ, ये ना करूँ वो ना करूँ, इसमें ये परेशानी इसमें ये सुविधाएं, इन चीजों में लगे। कई होगा सिर्फ एक ही है मौजूद है, मैं तो यही करना है, वो भी गलत होता है, बाय चांस उसमें सक्सेस ना हो तो निराश भी हो जाता है।
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं, कि आप उन्हें करने देते हैं कि बच्चे करेंगे सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, आपका किस तरीके का क्या विचारधारा है?
1: मैं तो सोचता हूँ कि जो इन्होंने सोचा है पहले उसमें ट्राई करें,
0: जी
1: अगर उसमें सक्सेस होते हैं तो खुश भी रहेंगे जीवन में, अगर नहीं हो पाते तो अपने चार पांच अपॉर्चुनिटी लेके चलें, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, किसी ना किसी में मुझको चला जाना है।
0: जी
1: फिर
0: पॉजिटिव
1: बात एक
0: माइंडसेट
1: बार
0: रखना
1: तो
0: है।
1: हाँ एक बार तो मुझको सेट होना है, उसके बाद ये नहीं हो कि आजकल लाइफ का भी चक्कर होता है, उम्र का भी चक्कर होता है, कई नौकरियां उम्र के हिसाब से मिलती है, ये नहीं हो कि एक ही चीज के पीछे बैठे रहें फिर एज ही निकल जाए। अगर किस्मत में होगा जो तुम चाहते हो फिर उस फील्ड में जा सकते हो, समय से हो गया तो एक बार तो जो मिलता है उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है, हर चीज में पैसा चाहिए, तो पैसे कमाना भी जरूरी है उम्र के साथ, फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं,
0: जी
1: मार्केट भी बहुत बड़ा हो चुका आजकल, तरह तरह की चीजें सामान यानी लोगों को प्रभावित करते, ये लोग वो
0: तो
1: खरीदो
0: आप
1: ये खरीदो।
0: युवाओं में क्या देखते हैं, कि वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर ज्यादा बचत कर रहे हैं?
1: आजकल के युवा खर्च ही कर रहे हैं, बचत कहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि पता नहीं हमने ये नहीं लिया वो नहीं किया, इधर घूमने नहीं गए ये नहीं
0: जी प्रेजेंट
1: खाया।
0: मोमेंट को कम्प्लीटली इंजॉय करें। लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है कि सबसे पहले उन्हें एक ध्यान किस चीज़ पर रखना चाहिए? क्योंकि मुझे भी क्या लगता है कि आजकल बच्चों को न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, कि बाहर का खाना ज़्यादा खाना, इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ चुके हैं थोड़ा तो एक। लेकिन आज के बच्चों में जागरूकता भी काफ़ी है अपनी हेल्थ को लेकर, तो इस तरीके से बच्चों को किस तरीके से आप गाइड करते हैं? घर पर आप कैसा माहौल रखते हैं खाने पीने को लेकर? आप कैसे उन्हें समझाते हैं कि ओकेजनली खाना है या फिर कभी कभार खाना है क्या, या फिर आप खुद भी अपनी आदतों में बदलाव रखते हैं जिसे देखकर बच्चे सीखें, या थोड़ा आप उन्हें शौक पूरे करने देते हैं खाने देते हैं फिर कुछ समझाते हैं, मतलब किस तरीके से आप गाइड करते हैं अपने बच्चों को?
1: वैसे तो समझाते रहते हैं जैसे बाहर का खाते हैं, अधिकांश चीजें तो मैदा से बनी हुई होती है, कहते हैं
0: जी
1: घर का हेल्दी खाना खाओ फल फ्रूट खाओ, पर नहीं मानते हैं तो क्या करें, उनको उनको भाता नहीं है घर का खाना, कई बार पहले
0: के लिए तो आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: पहले प्यार।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का

0: निरीक्षण करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसके अंतर्गत चर्चा होगी विश्व हाथी दिवस, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों का महत्व, समन्वित कृषि प्रणाली अपनाएं, कृषि लागत घटाएं। आप सुनेंगे वार्ता, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन से अधिक आय प्राप्त करें। वार्ताकार डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, सहायक प्राध्यापक केवीके नौगावा। दी जाएगी आपको जानकारी वर्षा जल संचय और भूजल संरक्षण, साथ में प्लास्टिक मल्च कृषि के लिए वरदान। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। तत्पश्चात रात 9:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15

मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 9:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका, समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: परसून जोशी के बोल, जतिन ललित का संगीत, गीत को गाया था हल्का याग्निक और शान ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह की आवाज में। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: कराएं।
1: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
0: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
2: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ब्रिक्स देशों में विश्वास और स्थिरता का सशक्त ढांचा जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद

0: सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी, आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्र हित के विषयों पर सभी वर्गों के लोगों से संवाद का आह्वान किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि निजी निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री आज जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में बोल रही थी। ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी से।
1: श्रीमती सीतारमण ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के प्रमुख विकास इंजन हैं, किंतु निजी पूंजी जुटाने के मामले में इन देशों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी की उपलब्धता के साथ ही निवेशकों के विश्वास, स्थिरता, दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को निवेश का जोखिम कम करने, वित्तीय परियोजनाओं को अधिक सक्षम बनाने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के प्रमुख विकासशील और उभरते हुए देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर की मेजबानी में ये बैठक हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री शाह आज संसद परिसर में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि सवाल जवाबदेही का है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने का आग्रह किया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर काम करने पर बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: देश विदेश के विश्वविद्यालयों के विधि विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस से प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे। इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं और इकाइयों में पुलिस कार्यों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना शुरू की है। इसके जरिए प्रशिक्षु प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, साइबर कानून और अन्य विषयों तथा अनुसंधान की प्रक्रियाओं में ट्रेनिंग ले सकेंगे। योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये योजना पूरे साल खुली रहेगी और इच्छुक उम्मीदवार राजकॉप सिटीजन ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी है। इससे प्रदेश में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर सामान्य से 9% कम रह गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अब तक बाड़मेर और बीकानेर सहित 7 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई है। अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर सहित 21 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रदेश के 693 छोटे बड़े बांधों में से आधे से ज्यादा जलाशयों में पानी की आवक हुई है। 25 बांध लबालब हैं। इस बीच आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर चला। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा में मूसलाधार बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 22 सेंटीमीटर पानी बरसा। जिले के बेगू, गगरार, निम्बाहेड़ा, डोंगला, भदेसर और रावतभाटा में भी जमकर बरसात हुई। रावतभाटा क्षेत्र का खोखी बांध पानी की तेज आवक के कारण टूट गया। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने कल 26 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल अधिकतर स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। रिमझिम बारिश के दौर के बीच आज हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया गया। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोग परिवार सहित मौसम का लुत्फ लेते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को अपने जीवन के अनुभव लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए। राज्य सरकार भी उनके योगदान को संरक्षित करेगी। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाएं युवा पीढ़ी तक पहुंचे, इसीलिए इन सेनानियों को अपने अनुभव किताब के रूप में लिखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्रहित के विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाज और राष्ट्र को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए।
1: मुझे ये विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे, जिस किसी से विषय रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनको बताइए। डेली की अगर आप 10-15 लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज जयपुर में नशा मुक्त भारत अभियान पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। वार्ता में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका है। श्री सिन्हा ने मीडिया कर्मियों से नशे के गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
2: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का, हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन, तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी एजेंसी कुछ भी काम कर ले,

0: लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
1: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का, हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन, तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी एजेंसी कुछ भी काम कर ले, जब तक मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करेगी नशा के दुष्परिणामों का, तब तक नशा मुक्त भारत अभियान मुश्किल है। अभी इस साल 13 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, फिर हमने कई सारे कोचिंग संस्थाओं में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उनको शपथ दी। तो इस तरह से होलसम अप्रोच से ही हमारा टारगेट होगा राजस्थान को ड्रग्स मुक्त करना, और हर स्टेट अपना ये टारगेट ले तो ये पूरा इंडिया ड्रग मुक्त 2029 तक होगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक अनुभव बैरवा ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जन जागृति फैलाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी के जरिए समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है, इससे नशा मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने में सहायता मिलेगी। आज विश्व हाथी दिवस है। ये दिन हाथियों के आवास और उनके संरक्षण के प्रयासों को समर्पित है। भारत दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों का घर है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट एलिफेंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत हाथियों के प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी दिवस पर पेश है न्यूज डेस्क एक रिपोर्ट।
2: हाथियों को जंगल की शान और इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है। देश के 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व और 150 महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर सक्रिय हैं। हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने और मानव हाथी संघर्ष टालने के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन और सेंसर सहित आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। जयपुर में देश का एकमात्र हाथी गांव भी बसाया गया है। वहीं आमेर में हाथी सवारी काफी लोकप्रिय है। हालांकि दुनिया भर में बढ़ते पशु कल्याण अभियान और जिम्मेदार पर्यटन की अवधारणा का असर इस पर देखने को मिल रहा है, और पिछले 5 साल में हाथी सवारी करने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी आई है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ब्रिक्स देशों में विश्वास और स्थिरता का सशक्त ढांचा जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी, आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्रहित के विषयों पर सभी वर्गों के लोगों से संवाद का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर में पिछले एक माह में विभिन्न कार्यक्रम और महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। इनमें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, प्रशासनिक गतिविधियों, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन से जुड़े कामों के साथ बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव पर भी जोर दिया जा रहा है। जिले में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को जयपुर में अल्बर्ट हॉल से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली रामनिवास बाग से सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंची। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन, पुलिस, सेना, विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, व्यापारी, पूर्व सैनिक और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में ब्रिक्स उद्यम और व्यापार मंत्रियों की बैठकें जयपुर में आयोजित की गई। बैठकों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे। इस दौरान ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

0: उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना है और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। इसके अलावा आज और कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को पीएम ई बस सेवा के तहत 16 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। उन्होंने शासन सचिवालय में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन के लिए शहर में जगह जगह बस स्टैंड, चार्जिंग पॉइंट और जरूरी ढांचा विकसित किया जा रहा है। नगर निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों बैठक आयोजित हुई। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों के गठन और प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, ईवीएम, कानून व्यवस्था, परिवहन और मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी की गई। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिले में 27 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले को 287 करोड़ 77 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें महिला सशक्तिकरण, आंवला उत्पादन और प्रसंस्करण, लिसोड़ा प्रजाति के विकास, कबड्डी, आमेर दुर्ग और रत्नाभूषण उत्पाद को बढ़ावा देने के कार्य शामिल हैं। वहीं महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कबड्डी खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यक उपकरण और रिहैब की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिले में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला कौशल और उद्यमिता समिति की बैठक हुई। इसमें कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। समिति का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसरों की पहचान कर युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षण से जोड़ना है। दूदू क्षेत्र में 113 दिनों से चल रहा भैराना धाम बचाओ आंदोलन सहमति के बाद समाप्त हो गया है। प्रशासन और समिति के बीच प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन को लेकर सहमति बनी। प्रशासन ने वर्षा जल संरक्षण, धार्मिक आस्था, पर्यावरण, स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी पूंजी जुटावण माए विकास बैंका रा काम ने खास बतायो। कहो ब्रिक्स देशा माए भरोसा अर्थरता रो मजबूत ढांचो जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो सरकार सगला मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार, विपक्ष संसद री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माए मदद री अरज कीनी। सावण माए आज ही कई थोड़ा चोखो में बरसियो। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भला रा मुद्दा मत है सगला तबकारा लोगाओं चर्चारी अरज कीनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहो है कि सार्वजनिक पूंजी ने निजी निवेश ने बढ़ावो देवन वाला तत्व रा तौर काम करनु चाहिए। वे ब्रिक्स देशा रा वित्त मंत्रियां और केंद्रीय बैंक रा गवर्नरा री आज जयपुर माई राखी जी मीटिंग माई बोल रही ही। मीटिंग रो मुद्दो ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका राखी चियो। पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रिपोर्ट।
2: श्रीमती सीतारमण ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के प्रमुख विकास इंजन हैं, किंतु निजी पूंजी जुटाने के मामले में इन देशों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी की उपलब्धता के साथ ही

0: निवेशकों के विश्वास, स्थिरता, दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को निवेश का जोखिम कम करने, वित्तीय परियोजनाओं को अधिक सक्षम बनाने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के प्रमुख विकासशील और उभरते हुए देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर की मेजबानी में ये बैठक हो रही है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सरकार विद्यार्थियों रा मुद्दा समेत किनी विषय माथे चर्चा सारू तैयार है। वे आज संसद भवन परिसर में खबरनवीसा सागे बातचीत कर रहा है। गृह मंत्री कहो कि सरकार संसद में सदस्यों रा सगला सवालों रो जवाब देवेला। श्री शाह विपक्ष रा सदस्य माथे सदन री कार्रवाई में अड़चन डाल बारो आरोप मंडियो।
2: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: दुजगानी लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी कहो कि विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक उंचुड़िया मामला में विद्यार्थियों रा प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रे बारा में सरकार उन जवाबदेही री मांग कर रियो है। संसद भवन परिसर में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका श्री गांधी कहो कि विपक्ष ने गृह मंत्री रा बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि सवाल जवाबदेही रो है। इबीचे संसद रा दुनियो सदना री कार्रवाई में आज ही विपक्ष रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों वारा मन भावता लोगों री आत्मकथा पांचवा सारू कहो है। वह रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रा जमाना में शॉर्टकट काम लेवानु बचबारी राय दीनी। श्री मोदी आज नई दिल्ली में पहली वाला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद री आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष रा विमोचन रे मौके बोल रहा है। वह नौजवानों विकसित भारत बनावन रा मिशन ने आगे बढ़ावन सारू पूरा मनु काम करण माथे जोर दीनो।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: देश परदेश रा विश्वविद्यालय माए कानून री पढ़ाई करण वाला अब राजस्थान पुलिस माए सिखावन ले सकेला। माने पुलिस मुख्यालय री न्यारी न्यारी शाखावां और इकाइयां माए पुलिस रा कामारो व्यवहारिक अनुभव मिलेला। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बिपिन कुमार पांडे कानून जारी करी जिया हुकम रे मुजब पुलिस मुख्यालय माए राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना चलाईची है। इरे जरिए सिखावन लेवन वाला असरदार निगरानी, आपराधिक न्याय प्रणाली, साइबर कानून और दूजा विषया और अनुसंधान री प्रक्रिया री सिखावन ले सकेला। इसारो आखा साल राजकॉप सिटीजन ऐप रे जरिए अर्जी दी जा सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सावन माय वह रही चोखी बिरखाऊ प्रदेश माय बारिश रे कमी रो आंकड़ो घटर सामान्य 9% कम रह गयो है। जल संसाधन विभाग रे मुजब हालताई बाड़मेर और बीकानेर समेत 7 जिला माय घनी जोरदार बिरखा भी है। अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर समेत 21 जिला माय सामान्य और 13 जिला माय सामान्य कम पानी बरसियो है। प्रदेश रा 693 छोटा मोटा बंधा मायू आधाऊ बत्ता माय पानी आ रियो है। 25 बंधा लबा लब भर गया है। इबीचे आज ही चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा माय झमाझम बिरखा भी। चित्तौड़गढ़ जिला रा बस्सी माय 22 सेंटीमीटर पानी बरसियो। जिला रा बेगू, गंगरार, निम्बाहेड़ा, डूंगला, बदेसर, रावत भाटा माई चोखो में बरसियो। रावत भाटा हल्का रो खोकी बंधो पानी री तेज आमद रे कारण टूट गयो, जिनो कई हल्का माई पानी भर गयो। मौसम महकमो काल 26 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट जारी की नो

0: काल घनखट होना मझला और कठा कठा तेज दर्जारी बिरखा रा आसार है। रिमझिम बारिश रा दौर बीचे आज हरियाली अमावस मनाई ची। ये मौके सैर सपाटारी न्यारी न्यारी ठोड़ा लोग परिवार समेत गोठ मनाता निचर आया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि लोकतंत्र सेनानिया ने वारी जिंदगी रा अनुभव लिखना चाहिए ताकि राज्य सरकार वारा योगदान री जानकारी हेर राख सके। श्री शर्मा आज जयपुर माए वारा रेवास माथे राखी जिया लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह माए बोल रहा है। वह कहो कि लोकतंत्र सेनानिया रा त्याग और बलिदान रे गाथा नुवी पीढ़ी ताई पुगा वनसारू वाने अनुभव किताब रा रूप माए लिखना चाहिए। मुख्यमंत्री कहो कि लोकतंत्र सेनानियों देश रा भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे लगातार चर्चा वेवनी चाहिए। वह कहो कि लोकतंत्र सेनानी समाज और देश ने दिशा देवन रो बूतो रखे है और मारा अनुभव रो फायदो प्रदेश ने मिलनो चाहिए।
1: मुझे ये विश्वास है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे, जिस किसी से विषय रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनको बताइए। डेली के अगर आप 10, 5, 15 लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज स्टेट इनोवेशन हब बनावन रा बारा माय मीटिंग लीनी। इनमाय जयपुर रा प्रताप नगर कोचिंग हब इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स माय स्टेट इनोवेशन हब बनावन रा प्रस्ताव रा बारा माय चर्चा करी ची। मुख्य सचिव प्रस्तावित हब माय इंक्यूबेशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और क्षमता निर्माण कार्यशालावां सारू जरूरी सुविधा शामिल करन रा हुकम दीना। नशा मुक्त भारत अभियान रे बारा माए आज जयपुर माए पत्र सूचना कार्यालय री ओर मीडिया वार्ता राखी जी। मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका मुद्दा माथे चर्चा करण सारू राखी जी वार्ता माए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो रा जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा नशीली चीजां री तस्करी और गैर कानूनी कारोबार री रोकथाम सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी दीनी। वह कहो कि नशा रा खिलाफ जाग जगावण माए मीडिया रो खास काम है। श्री सिन्हा मीडियाओं नशा रा गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान रे बारा माए लोगों ने जानकारी देवण बाबत कहो।
2: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन, तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी एजेंसी कुछ भी काम कर ले, जब तक मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करेगी नशा के दुष्परिणामों का, तब तक नशा मुक्त भारत अभियान मुश्किल है। अभी इस साल 13 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, फिर हमने कई सारे कोचिंग संस्थाओं में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उनको शपथ दी। तो इस तरह से होलसम अप्रोच से ही हमारा टारगेट होगा राजस्थान को ड्रग्स मुक्त करना, और हर स्टेट अपना ये टारगेट ले तो ये पूरा इंडिया ड्रग मुक्त 2029 तक होगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय रा निदेशक अनुभव बैरवा कहो कि नौजवाना ने नशारी लतों बचावन और स्वस्थ जीवन शैली सारू जनता माए जाग जगावन रा काम माए मीडिया घणो खास है। श्री बैरवा कहो कि अखबारा रेडियो और टीवी रे जरिए समाज माए सकारात्मक वातावरण बनायो जा सके है। आज विश्व हाथी दिवस है। ओ दिन हाथियां रा रहवास एरवाना बचावन री कोशिशा ने समर्पित है। भारत दुनिया रा करीब 60% जंगली एशियाई हाथियां रो घर है। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए हाथियां ने बचावन सारू चलाया जा रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट रो जिक्र कीनो। देश में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय री ओर प्रोजेक्ट एलिफेंट रातेत हाथियां रा रहवास ने बचावन री कोशिशां करी जा रही है। हाथियां ने जंगल री शान और इकोसिस्टम रा इंजीनियर कहा जावे है। देश रा 14 राज्यां में 33 हाथी रिजर्व और 150 खास हाथी कॉरिडोर है। हाथियां री आवाजाही माथा नजर रखण और इंसाना और हाथियां री लड़ाई टाळबा सारू कैमरा ट्रैप ड्रोन और सेंसर समेत नवी तकनीक काम ली जा रही है। जयपुर माए देश रो एक लो हाथी गांव भी बसाई चियो है। आमेर माए हाथी री सवारी ये घणी लोकप्रिय है। हालांकि दुनिया भर माए बधता पशु कल्याण अभियान और जिम्मेदार पर्यटन री सोच रो असर ई माथे ही नजर आवन लाग्यो है। अरलारला 5 साल माए हाथी सवारी करण वाला परदेसी सैलानिया री तादाद माए कमी आई है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर

0: सुन ले राव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी पूंजी जुटावण माए विकास बैंकां रा काम ने खास बतायो। कहो ब्रिक्स देशा माए भरोसा अर्थरता रो मजबूत ढांचो जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो सरकार सगड़ा मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार। विपक्ष संसद री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माए मदद री अरज कीनी। सावण माए आज ही कई ठोड़ा चोखो में बरसियो। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भला रा मुद्दा माथे सगड़ा तबका रा लोगाओं चर्चा री अरज कीनी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती सुनने वाले किसान भाइयों को गरिमा बहन की घनी घनी राम राम। तो आज ग्राम भारती कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा सबसे पहले विश्व हाथी दिवस पर, किस तरीके से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों का महत्व है। उसके बाद में होगी वार्ता, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन से अधिक आय किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं केवी के नौगावा से। और इसके बाद होगी विशेष जानकारी, वर्षा जल संचय द्वारा किस तरीके से भू जल संरक्षण किया जाता है और किस तरीके से जो प्लास्टिक मल्चिंग है वो कृषि के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व हाथी दिवस की। तो देखिए, विश्व हाथी दिवस की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और हाथियों को संरक्षित करने के लिए हाथी जिस तरीके से झुंड में एकता बना के चलते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व हाथी दिवस का के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें वर्षा जल संचय द्वारा भू जल संरक्षण की, तो भूमि और जल प्रकृति की अनमोल संपदा है जिनका की खेती के लिए उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आया है। वर्तमान में इनका उपयोग इतनी लापरवाही से हो रहा है कि इसका जो संतुलन ही बिगड़ गया है और भविष्य में इनको संरक्षण से बिना जो है मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारे प्रदेश में बहुत बड़े भूभाग पर जो खेती है वो वर्षा पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर खेती में हमेशा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वर्षा की तीव्रता और मात्रा पर हमारा कोई बस नहीं चलता है। इसलिए इस तरह की खेती में वर्षा ऋतु के आगमन से ही कुछ व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, जिससे कि वर्षा से होने वाले भू अक्षरण को कम करते हुए वर्षा जल का अधिकतम उपयोग खेती में किया जा सके। अगर हम बात करें जल संरक्षण की, तो नमी संरक्षण की जो मुख्य कार्य है वो बारिश का प्रत्येक बूंद को खेत की ढाल की विपरीत दिशा में कृषि कार्य द्वारा संचालित किया जा सकना है, ताकि वर्षा का जो जल है वो खेतों के ढाल के लंबवत बनी नलियों में, खेतों के बीच में जो मेड़े बनाई हुई हैं उसमें इकट्ठी होकर जमीन में सूखी जा सके। कार्बनिक और अकार्बनिक पलवार के रूप में फसल अवशेष, सूखी घास, प्लास्टिक शीट आदि को खेत की अधिकाधिक मात्रा में खेत में समावेश किया जा सकता है। पलवार के उपयोग से मिट्टी का जो तापमान है और सूक्ष्म वातावरण भी जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें खेत का पानी खेत में, तो वर्षा जल संरक्षण में भू जल पुनर्भरण के लिए खेत का पानी

खेत में विधि को अधिकतम अपनाया जाए। यह कार्य वर्षा से पूर्व या वर्षा मौसम में भी किया जा सकता है। खेत का पानी खेत में रहे इसके लिए नाली, कुंड, पोखर इत्यादि जो है बनाए जाने चाहिए, और खेत का पानी खेत में रहने पर खेत की मिट्टी, जीवांश और पौधे पोषण भी खेत में रहने से फसल सूखने के प्रभाव से बच जाती है। दो खेतों के बीच में मेड़ की बजाय नाली बनाएं। भूमि में जल के रिसाव को बढ़ाने हेतु बरसात के पानी को खेत के आसपास इकट्ठा करें। इन नालियों में जगह जगह गड्ढे बनाने से जल रिसाव की गति को बढ़ाया जा सकता है। खेत की नालियों को पोखर से जोड़ें। पोखर का स्थान और आकार सुविधा अनुसार रखें। पोखर में जल की आवक और निकासी की व्यवस्था जरूर करें। पोखर में जल रुकेगा और रिसेगा तो भू जल भंडार जो है वो भरेगा। सड़क के दोनों ओर पोखर, उथली क्यारियां पानी को रोकने के लिए और रिसाव जो है उसको बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो ये बात हुई वर्षा जल संचय द्वारा भू जल संरक्षण की, और चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच आइए सुन लेते हैं एक

0: और अनुदान का लाभ भी उठाए।
1: सिंचाई पाइपलाइन के लिए लघु और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 7% तथा अधिकतम 18,000 जो भी कम हो और अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 50% या अधिकतम 15,000 जो भी कम हो अनुदान दे है। आत्मा योजना अलवर द्वारा किसान हित में जारी।
2: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे संदेश, और जैसा कि देखिए विश्व हाथी दिवस आज है और हमने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी कि विश्व हाथी दिवस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों का क्या महत्व है? तो देखिए, जंगल प्रकृति का एक खूबसूरत चेहरा है जहाँ हरे भरे पेड़, जीव जंतु, जड़ी बूटियाँ, अलग अलग प्रजातियों के खूबसूरत पक्षियों का आशियाना और जंगली हाथी जैसे सैकड़ों वन्य जीव जो हैं वो रहते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के महत्व को स्वीकार करना है। ये दिन विशेष रूप से हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको आकर्षित करने के मकसद से मनाया जाता है। हाथी विश्व के लिए बहुत ही जरूरी प्राणी है। हाथी जंगल में रहने वाले दूसरे वन्य जीवों के लिए भी एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में चलने की वजह से घने जंगलों में खुद ब खुद रास्ता बनते जाता है, जो कि दूसरे जानवरों के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। अब हाथी दिवस के अगर हम महत्व की बात करें तो हाथियों को कई संस्कृतियों में पवित्र पशु माना जाता है और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी होते हैं। हाथी जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं। ये एक बुद्धिमान प्रजाति होती है। उनके पास किसी भी स्थान पर रहने वाली प्रजातियों की तुलना में आकार में सबसे बड़ा जो दिमाग है वो भी पाया जाता है। तो अगर हम विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की बात करें तो देखिए सिम्स और एलिफेंट की अगर फाउंडेशन की बात करें तो उसके द्वारा साल 2011 में इसकी पहल की गई थी, लेकिन वास्तविक तौर पर 12 अगस्त 2012 को इसे मनाने की घोषणा की गई। अब विश्व हाथी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि हर साल 12 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य हाथियों के लुप्त हो रही संख्या, उसके कारणों पर की और लोगों का ध्यान खींचना है, साथ ही उनके संरक्षणों के उपायों, पुनर्वास, बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और गैर कानूनी तस्करी को रोकने की ओर भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। हाथी दांत की मांग अफ्रीकी और एशियाई दोनों हाथियों के अवैध शिकार को बढ़ावा देती है और हाथी दांत का जो मूल्य है वो अब सोने से भी अधिक हो गया है। अफ्रीकी हाथियों को अवैध शिकार की महामारी का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों का मांस, चमड़ा और शरीर के अंगों के लिए भी अवैध शिकार किया जाता है। अवैध वन्य जीव व्यापार हाथियों को तेजी से खतरे में डाल रहा है। वनों की कटाई की हम बात करें तो खनन में

0: वृद्धि और कृषि गतिविधियों के कारण आवास का नुकसान समस्याग्रस्त होता जा रहा है। खासकर एशियाई हाथियों के लिए आवास का विखंडन भी अलगाव पैदा करता है। इससे प्रजनन अधिक कठिन हो जाता है और शिकारियों को हाथियों को खोजने और जाल लगाने में अधिक आसानी होती है। हाथियों ने अपने आवास का लगभग 30-40% हिस्सा जो है वो खो दिया है, जिससे कि उनके लिए अपनी संतानों और खुद को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता चला जा रहा है। अगर इस अभियान के हम उद्देश्य की बात करें तो एक स्थायी वातावरण का निर्माण करना है, जहां हाथियों के साथ होने वाले शोषण को रोका जा सके और उनकी देखभाल की जा सके। चिड़ियाघरों, सर्कसों और पर्यटन में हाथियों की देखभाल और उपचार के बारे में कानून की कमी अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार का कारण बनती है। कैद हाथियों के लिए ये एक गंभीर खतरा हो सकता है और हाथियों को अक्सर जंगली में अवैध रूप से जो पकड़ लिया जाता है और आकर्षक पर्यटन उद्योग में तस्करी कर लाया जाता है। तो इन सब चीजों को रोकने के मकसद से विश्व हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब बात करें कि हाथी जरूरी क्यों है। हाथी विश्व के लिए बहुत ही जरूरी प्राणी है। हाथी घनिष्ठ पारिवारिक समूहों में रहते हैं और जंगल में रहने वाले दूसरे वन्य जीवों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाथी झुंड में चलते हैं, जिससे कि घने जंगलों में रास्ता बनते जाता है और दूसरे जानवरों के लिए भी मददगार होता है। हाथी अपने झुंड के अन्य सदस्यों के साथ मजबूत भावनात्मक बंधन बनाते हैं। ये बहुत ही सामाजिक प्राणी है और अगर कोई दूसरा हाथी भी पास में आराम कर रहा हो तो वो अधिक समय तक आराम करेंगे। प्रत्येक हाथी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। उनके व्यक्तित्व लक्षण झुंड के भीतर उनकी सामूहिक भूमिका को प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि वे समस्याओं को कैसे हल करने की कोशिश भी करते हैं। हाथियों को खेलना कूदना बेहद पसंद होता है और सिर्फ बचपन में ही नहीं, बड़े होने पर भी हाथी पानी को हवा में फेंकते हैं, जमीन पर लौटते हैं और मजे के लिए दूसरे जानवरों का पीछा भी करते हैं। तो ये तो बात हुई विश्व हाथी दिवस की। आगे भी चर्चा हमारी ऐसी जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच आइए सुन लेते हैं एक और संदेश।
1: बूंद बूंद सिंचाई अपनाएं, पानी की हर बूंद से अधिक उत्पादन पाएं। बूंद बूंद सिंचाई अपनाने से पानी की 60% तक बचत होती है, फार्म की मजदूरी भी बचती है और फसल का उत्पादन भी 150% अधिक होता है। बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लघु और सीमांत किसानों के लिए 75% और सामान्य किसानों के लिए 70% तक अनुदान दे है। और हाँ, किसान अनुदान के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा किसान हित में जारी।
0: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे संदेश और अब ग्राम भारती में वक्त हो चला है वार्ता का। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन से अधिक आय हमारे किसान भाई किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं केवी के नौगावा से। आइए सुनते हैं।
2: भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 65-70% जनसंख्या कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों पर आश्रित है। भारत विश्व के कुछ ही गिने चुने देशों में से एक है जहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि हमारे देश में विविध प्रकार के फल व सब्जियाँ उगाई जाती है। इस समय भारत फल एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। धान्य व दलहनी फसलों की अपेक्षा फल व सब्जियां बहुत अधिक नाशवान प्रकृति की होती हैं। अधिकतर फलों व सब्जियों में 80-95% तक पानी होता है एवं धान्य एवं दलहनी फसलों से भारी होते हैं। उनका गठन मुलायम व श्वसन क्रिया अधिक होने के कारण इन्हें ढुलाई एवं भंडारण के दौरान बहुत से सूक्ष्म जीव ग्रसित करते हैं, जो कई रोगों का कारण बन जाते हैं। फल सब्जियों के संरक्षण हेतु संसाधनों, शीतगृहों एवं शीत श्रृंखला का अभाव होने के कारण उपभोक्ता

तक पहुंचने के दौरान बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाते हैं, जिससे कृषकों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान होता है। इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है कि अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग द्वारा विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण विधा द्वारा कृषि उत्पाद को संरक्षित किया जाए। कृषि प्रसंस्करण तकनीक की सहायता से स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। भारत में प्राचीन काल से खाद्य प्रसंस्करण विधा का प्रयोग कर खाद्य पदार्थ, फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता रहा है। घरेलू स्तर पर अचार, मुरब्बा, चिप्स, पापड़, जूस इत्यादि का निर्माण होता रहता था। औद्योगिकरण के पश्चात औद्योगिक कंपनियां मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद बाजार में उतारने लगी, जिसके कारण घरेलू तथा लघु स्तर पर निर्मित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद की मांग घटने लगी। यद्यपि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लघु एवं मध्यम उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए प्रशिक्षण से लेकर सस्ते दर पर ऋण प्राप्त करवाने, आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने और अनुदान प्रदान करने के साथ विपणन हेतु बाजार व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ करते हुए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सके। फल एवं सब्जी इत्यादि को नष्ट करने वाले कारकों को प्रतिबंधित व नियंत्रित कर शेल्फ लाइफ बढ़ाकर दीर्घ काल तक संरक्षित रखा जा सकता है। प्रसंस्करण तकनीकी द्वारा कृषि उत्पाद के जीवाणु तथा कवक को नष्ट कर उनके प्रजनन व विकास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। कृषि उत्पाद में वसा के ऑक्सीकरण की गति को कम करने के साथ एंजाइम उपापचय की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। जीवाणु एवं कवक के जीवन काल के लिए अनुकूल वातावरण एवं परिस्थितियां, नमी, पानी और ऑक्सीजन पर नियंत्रण स्थापित कर कृषि उत्पाद को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। प्रसंस्करण तकनीक द्वारा खाद्य उत्पाद का विविधीकरण और व्यवसायीकरण कर मूल्य संवर्धन किया जाता है। प्रसंस्करण में किण्वन, स्प्रे ड्राइंग, फ्रिज ड्राइंग, प्रशीतन, थर्मल प्रसंस्करण, निर्जलीकरण, धूप में सुखाना, नमक व चीनी में परिरक्षण, विभिन्न प्रकार से पकाना, रस सांद्रण, हिमशुष्कन, सिरका, साइट्रिक अम्ल, तेल, कृत्रिम मिठास तथा रासायनिक परिरक्षकों द्वारा कवक व जीवाणुओं को नष्ट कर फल एवं सब्जियों को संरक्षित किया जाता है। कृषि उत्पाद की भौतिक व रासायनिक अवसंरचना में परिवर्तन कर अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, वेजिटेबल सॉस, सब्जियों व फलों को मूल रूप से नमक और मीठे पानी में केनिंग प्रणाली द्वारा अथवा इनका रस निकालकर वैक्यूम पैकिंग द्वारा लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। संरक्षण के लिए खाद्य पदार्थ को उपचार के पश्चात सीलबंद अथवा निर्वात पैकिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिससे संरक्षित खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं द्वारा पुनः दूषित करने से बचाया जा सकता है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं के मद्देनजर सरकार इसके तीव्र विकास के लिए अनेक प्रयास कर रही है। सरकार मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क की स्थापना, शीत श्रृंखला का निर्माण, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान, नाबार्ड और मुद्रा योजना के अंतर्गत आसान शर्तों एवं सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक स्थान पर साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार तंत्र से जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिससे कृषि उत्पाद की बर्बादी को न्यूनतम कर किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पाद का मूल्यवर्धन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन किया जा सके। यहाँ संग्रहण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, शीत श्रृंखला और लगभग 30-35 पूर्ण विकसित भूखंड होते हैं, जिसमें उद्यमी

0: खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। मेगा फूड पार्क में कृषि उत्पाद की सफाई, ग्रेडिंग, छटाई तथा पैकिंग सुविधा, शुष्क माल गोदाम, प्री शीतलन चैम्बर, परीक्षण प्रयोगशाला, विशेषीकृत भंडारण, भाप रोगाणुनाशक यूनिट, प्रेशर वेंटिलेटर, परिवर्ती आर्द्रता भंडार इत्यादि की सुविधा होती है। मेगा फूड पार्क स्कीम परियोजना में लगभग लागत का 50%, परंतु अधिकतम 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त पूंजी अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण तकनीक के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण का व्यापक अभाव है। सरकार ने युवाओं, किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में करियर विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। खाद्य प्रसंस्करण की महत्ता को देखते हुए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य उद्योग क्षमता एवं कौशल पहल तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कौशल परिषद के सहयोग से फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, खाद्य तेल, डेयरी उत्पाद, मांस एवं पोल्ट्री उत्पाद, मछली एवं समुद्री भोजन, ब्रेड एवं बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ आदि विभिन्न क्षेत्रों में मानक प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहा है। इसमें राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं निजी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के दो संस्थान निफ्टेम और भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कौशल विकास और उद्यमशीलता के संबंध में कार्यक्रम चला रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण कौशल विकास में प्रसंस्करण स्थल का निर्माण, रखरखाव, साफ सफाई तथा कृषि उत्पाद की छटाई सफाई, प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्माण की विधि, कैनिंग और पैकिंग के बारे में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कुशल मानव शक्ति द्वारा सुरक्षित खाद्य प्रसंस्करण संपादित किया जा सके। फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम होता है, जबकि प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की संभावना बहुत अधिक है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार स्वतंत्र रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गठित किया है। यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के विकास, विस्तार और प्रचार प्रसार के अतिरिक्त किसानों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण एवं अनुदान की व्यवस्था कर रहा है और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद के विपणन हेतु व्यापक बाजार व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। किसान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पाद में पारिवारिक सहयोग से मूल्यवर्धन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या कम करने के अलावा देश और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सकेगी।
1: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे ये वार्ता। जानकारी दे रही थी डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं केवी के नौगावा से। और अब हमारे किसान भाइयों का करा देते हैं देखिए मनोरंजन, सुना देते हैं उनको एक प्यारा सा लोकगीत, सावन आयो रे।

तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे सावन आयो रे प्यारा सा लोकगीत। जाहिर सी बात है सावन का महीना है तो लोकगीत भी सावन के ही होंगे। और अब देखिए हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे देते हैं प्लास्टिक मल्चिंग पर, किस तरीके से जो प्लास्टिक मल्च है वो कृषि के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो क्या फायदा है प्लास्टिक मल्च का? मल्चिंग मिट्टी में नमी, तापमान और जीवाणु सक्रियता की सहायता से फसलों के उत्पादन गुणवत्ता में बढ़ोतरी और फसलों की जो पूरी परिपक्वता है उसमें सहायक होता है। प्लास्टिक मल्च जो है वो पौधे के आसपास मिट्टी को ढकने में काम आने वाली एक प्लास्टिक की फिल्म होती है, जो कि फसलों, सब्जियों, फलदार पौधों की अच्छी बढ़ोतरी, विकास और उत्पादन के लिए पौधे को अनुकूल परिस्थितियाँ जो है वो उपलब्ध कराती है। ये पौधे की जड़ में जो सूक्ष्म जलवायु और मिट्टी रहती है उसके तापमान में समन्वय स्थापित करने में भी ये मदद करती है। अब अगर हम बात करें कि प्लास्टिक मल्च का चयन किस तरीके से हमारे किसान भाई करें, तो उसमें जो भू नमी संरक्षण है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। प्लास्टिक मल्च जल और वायुरोधी होती है। भूमि की जो नमी है उसमें वाष्पोत्सर्जन के समय जो है अंदरूनी सतह पर जमा होकर पानी की बूंदों के रूप में भूमि को मिल जाती है और कम सिंचाई की जो है जरूरत फिर पड़ती है। अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो काली अपारदर्शक जो प्लास्टिक है वो मल्च सूरज के प्रकाश को भूमि की सतह तक जाने से रोकती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता और खरपतवार जो है वो नहीं बन पाते हैं। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक मल्च जो है भू नमी के वाष्पोत्सर्जन को रात में समय

रात के समय में भी जो है उष्ण तापमान कायम कर बीजों के शीघ्र अंकुरण और नवोदित पौधों की जड़ों को शीघ्र विकसित करता है। तो अगर प्लास्टिक मल्च की हम बात करें तो प्लास्टिक मल्च के जरिए हमारे किसान भाई अपनी कृषि को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई प्लास्टिक मल्चिंग की। तो अब हमारे किसान भाइयों से समय हो चला है विदा लेने का। तो आज के लिए बस ग्राम भारती में इतना ही। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

गीत को गाया था सुजाता त्रिवेदी ने, वो लिखे थे महबूब ने, संगीत AR रहमान का। अगला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म चाइना गेट से, वो लिखे हैं समीर ने, संगीत अनु मलिक का। गीत को गाए हैं सोनू निगम, हरिहरन विनोद राठौड़ ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा से। गीत को गाया है बप्पी लहरी, आशा भोसले ने। बोल लिखे हैं इंद्रवीर ने, संगीत

आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं है। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि NCDC को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत NCDC को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले NCDC एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, DMK सदस्य KRN राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, BRS के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, AIADMK सदस्य M थंबीदुराई, डॉक्टर N धनपाल, UPPL के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, TDP के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, YSR कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की JB माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, DMK के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, YSR कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, AIADMK सदस्य M थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, RLM के उपेंद्र कुशवाहा, BRS के रविचंद्र बद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के V शिवदासन और AA रहीम, TDP के विजय चिंता कायला, KCM सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार P, IUML के हारिस बीरन, UPPL के रवंगवरा नारजारी और DMK सदस्य LK सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद

इनमें मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थी। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और FCRA विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया
कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने

लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं। 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन की ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं नूर मोहम्मद मीरासी और साथी।

आता है निपीतिया को लाख ने कही के ले भाई राजा अर्जुन डाट अपना लेके राजा अर्जुन निपीतिया को कहा चलता हो जाता है जेत खम पे जाकर याने जेत खम के पे जिंदो गज का दियो ओ अब चलो कहा सहदेव के पास में याने कही रे राजा सहदेव हा देख भाई तेने नू कही निपीतिया लार गच का दियो तेने नू कही कि जग जो नार दियो जग जो नार दे दी अगर कोई ये बाकी रहरी हुए वाय और बता दे राजा सहदेव ने कही के भाई मैं कहा बताऊं भेद बतावे भेद देखन दियो और याने भेद खोलो भेद खोल के और याने राजा अर्जुन बुलायो राजा अर्जुन हाँ अभी तो बहुत कसरे राजा अर्जुन बोलो के भाई तू कसरे मेट ले और कुछ हो जाए बता दे भर भर की रामायण मत राखे जो कुछ बात हो जाए तू एकदम बता दे तका

कहता है राजा सहदेव, कौन से राजा अर्जुन से, राजा अर्जुन मैं तो या वेद की बात बताऊं, अर्जुन जब जग पूरी हुए लोकनी चले जावे, सेहत बली शिकार मार के वाकु डावे, अरागे नागर दिमसान हे वासम तरना कुवई, इमरत आवे लोक पताल सू अर्जन तेरी जब जग पूरी हुई। ओ भाई राजा अर्जन, मैं आपको बात बताऊं, ये वेद की बात है, शेख बलि की शिकार पाताल लोक सु आएगी,

ने कही के मैं जाऊं कोई सा और ले जाऊं। सहदेव बोलो के यार एक सू दो भला कोई सा और ले जा। तो जान ना कौन राजा जिन भीम के सामने क्या एक दोहा को पेश कर तो है क्या?

बोलो के यार भाई पैसा है और ने जाके यार ये सब रोटी राम इन सुबह ना रुके कि भाई तू ही चल नाट गो के मैं ना चलू यार भूखो पिसाए परेशान रहू के ना भाई तू ही चल। तीसरा को कहनो राजा अर्जुन को कदी भीम ने ना डोटो तो बकार भीम और राजा अर्जुन दोनों का दोनों कहां चलते हो जाते हैं पाताल लोक। आगे आगे राजा अर्जुन पीछे पीछे भीम और ये पाताल लोक में पहुंचा। भीम की नजर पड़ जावे देखे तो गेंडान की डार आ रही है। ये बोले रे राजा अर्जुन कहां जा रहे हो तू यार गेंडान की शिकार लाएगा के ही कहा ओरे के यार गेंडा ये तो है कि भाई मैं तो जानू भी ना कि ना मैंने पहले भी देख रखा है भाई ये कि तो यार अब देर कहां है जल्दी हो जाएगी कि सही बात है तो कहता अब तू इतना काम कर ले कितना कौन कहते हैं भीम कौन से राजा जैसे क्या बात होती है।

कौन कहता है राजा जन से भी राजा जन। हाँ भाई देर मत कर, बहुत देर हो रही है। याने बाण समारो राजा जन ने, गेंडो जो भड़ो गेंडा हो हुआ गोट पे, याने बाण सूदो करो भीम बोलो के राजा जन, शिकार खेले तो तू बड़ा के खेलो, कभी छोटा मोटा खेले, अंत भी पापर पंत भी पा।

तो मेरे दोस्त राज अर्जुन ने जब बाण पकड़ो और यहां ने गेंडा के ऊपर छोड़ो, राजा अर्जुन पकड़ी बाण

इंतजार न कर यार ने कही, कौन ने राजा अर्जुन ने भीम हाँ यार हमने पर्वत उठा दिया हर पेड़ी पर धर धर कर और गीजरो ना उठो हम भीम बोले कि राजा अर्जुन मोह तो दुनिया में जिंदो छोड़े गोख ना छोड़े यार कभी तू पाताल लोक सु ही यार पाताल लोक सु हूं भेद दे टिकड़ी ना दे मो यार। राजा अर्जुन बोलो के तो यार एक बात बता भीम जब हम सुई ई गेंडो नहीं उठो तो ये तो कोई गृह चक्करी है नहीं हम पर्वत का पर्वत ने उठावे तू चलो जा या की भीम की एक शरत थी मैं मेरा भाई की बड़ा की राजा अर्जुन की कभी बात नहीं उल्टूंगा जीवन में तीस। अब राजा अर्जुन गेंडा को मार के एक झिकटी के बोले बैठ जाए छाया में वो कौन गेंडान को धनी आ जाए गेंडान को धनी कौन बबरा बाण कौन को राजा अर्जुन को लड़का तो पहन के जब राजा अर्जुन शिकार खेलन को कृष्ण जी महाराज के साथ में पाताल लोक को गया जब याक ने बासक देव नाथ कर कृष्ण जी महाराज ने जब यू देवनी दिवाई ही याकु राजा अर्जुन को तो या की दिसड़ सु रह गो या के यू तो राजा अर्जुन जब आयो हो जब या कह के आयो बासक देव सु के बासक देव कहा अगर मेरे छोरी हो जाए तो चिट्ठी पिट्ठी भेजो मत और कोई लड़को हो जाए तो भाई मोको तो चिट्ठी भेज दियो अब यू हो गो या के कौन लड़को पैदा हो गयो देवनी के दिसड़ सु बबरा भाण राजा अर्जुन की सु या ने दिल सोचो के यार तू या की खबर भेजोगे इतना काम तो माने जब करा हा और अगर वो लड़का की खुशी में कहा तो या मुलक के गर्गाप कर जावा तू खत पत्तर भेजे ही मत भाई अब यू आयो गेंडा की शिकार को इनका मुठभेड़ होगा तो बबरा बाण भी आखिर राजा अर्जुन को लड़का हो बलंकारी हो सूरमा हो और या ने गेंडा मरो देखो और या ने शोक करो अपना दिल को तो देख के गेंडा को घबरा जाते और क्या एक दोहा को बबरा बाण कहते हैं तो क्या बात होती है

the baby kon ko raj ara hu ye sobi jodha kon ha

ने कुछ अपनो दिल भारी करो कि अगर मुझे मिलता तो मैं जाने क्या करतो ना। तू अब ये काम करिया, तू घरे ले चल अपना कपना दफना तेरो बात या की चराई चुगा हो। अब या को अचक देसी चारू पांव पकड़ कर याने बकरी को सो बच्चों कंधा पे धर कर लेकर चलो। राजा जन बोलो तेरी बहन की दोनों भाई पे ना उठो, एक तगड़ो जो धाय जाने ही उठा लियो। या का तलवार का नीचा कर भूड खसकने लगी। जब ले चलो जब बोलो के यार कोता माता को दूध आद लाजो जाएगो। तेरी मारी शिकार है दुनिया में कोई ले रागो ना। ये काम करे सु दो दो बात तो कर ले सूर मत तो सुजाता है तो जान न कौन। राजा अर्जन तो भबरा भाण से अपना बेटा से लेकिन पतो नहीं दो दो बाप बेटा ने कि मेरो बेटो है री मेरो बाप है। तो राजा अर्जन भबरा भाण से क्या एक दोहा को कहता है क्या बात होती है।

राम मैं देखता हूँ सूरमा जो मेरे आगे मेरा गेंडा मार दो बारे धून उजाड़ में मेरो राज मेरो पाट अराज वाने मेरे बिना मेरी शिकार मार ली मारे दूर उजाड़ में फिरे हमारी ताड़ ऐसो जुधा कौन हो जो

का काज। अरे पागल का बच्चा, या लेके कैसे जा रही तो मैं न मारो। और या ने गेंडा पटको और ई लखा लखा

राजा अर्जुन ने, भाई मैं तो मेरी शिकार के मारे आयो हूँ, तू यहाँ देर कहाँ किया? याने कही रे बावड़ा, मेरो गेंडा है, मेरी शिकार है, मैं तो कुआए नहाए तू, मेरो तू पक्को दुश्मन हा मेरी सुनियो। वाई बखत बपरा बाण किस तरह राजा अर्जुन के ऊपर, आर या के पे तीन बाण, तो जान तीनों बाणन को छोड़ तो है, मगर राजा अर्जुन के एक भी ना लगे। या न जो पहल को बाण छोड़ो सिर को, पावन को झुक जाए, फिर दूसरो छोड़ो सिर को, पावन को झुक जाए, तीसरो छोड़ो सिर को, पावन को झुक जाए। या ने तीन बाण छोड़ा, एक भी सक्सेस ना हुयो,

हुई। राज अर्जुन ने दादा भीकम कुसुमर तो है, कोता माता कुसुमर तो है, धूम गुरु कुसुमर तो है। बबरा बाण की छाती पे चढ़ के बैठ जावे। जब बबरा बाण की छाती पे चढ़ के राजा अर्जुन बैठो तो क्या ये दुहा को कहे तो हेर क्या बात होती है।

कर दी पूजे पाकेरो कहा भी सब है छत्री।

चेतन चलावे बाण आन पग पूजे मेरा और बाण दऊं मो देह के बीच बाण सिर लेवे को फेरा। तू चतर चलावे बाण को मेरा आकर पूजे पाक रो कहा सबब है छत्री अपना तू बता दे बाप को नाम। लाला क्या तेरा बाप को नाम है? कौन सा तू मुलक को है आरे सो छत्री? मैंने कोई दुनिया में ना देखो जो मोसू जी तो अबर मैं तेरी या हिम्मत मानू तू मोसू घोड़ो तो सही। बबरा बाण बोलो जासू हिरासा तो हो जाए के यार तेने इतना जोधा दुनिया में देखा तक कोई सु नहीं हारो। अबर बड़ा कमाल हुआ तेरी छाती पे चढ़ के बैठ गुनाया सु तू एक दुहो तो कह ले। तो जाए ना कौन बबरा बाण राजा अर्जुन से क्या एक दुहा को कहता है तो क्या बात होती है?

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं।

0: लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: अरे
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
4: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में

0: माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गया।

राजेंद्र कृष्ण की कलिखा ये नगमा था मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हम

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था, और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला, और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई, जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडिचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी 16वां सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

0: झुक जाए दोनों आंखें, मारो तो छुरपट जाए छुरपट जाए, दोनों आंखें मारो तो छुरपट जाए छुरपट जाए।
1: ए पंकज।
2: इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली।
1: माना माना

0: बम बम।
1: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूमकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थीं।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सामिन, कहते हैं प्रेम एक ऐसी आग है जो अदृश्य रूप से जलती है, एक घाव जो दर्द करता है पर महसूस नहीं होता। यूं तो प्रेम करने का दावा हम सभी करते हैं, लेकिन अपने देश की माटी से, अपनी मातृभूमि से जिसने प्रेम किया, उन्हें आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। गीतकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि उनकी कलम से निकले गीतों से वतन परस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां करता ये गीत आज भी सर चढ़कर बोलता है। गीतकार रामप्रसाद और प्रेम धवन ने इसे कलमबद्ध किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

0: रांगंदे बसन।
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं।

संगीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम, सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गए हमें।

जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम।

संगीतकार साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीत

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आपके साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था।

0: विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।